0: Indeed, Allah alone has knowledge of the hour, and sends down the rain, and knows what is in the wombs. And no soul perceives what it will earn tomorrow, and no soul perceives in what land it will die. Indeed, Allah is knowing and acquainted.
1: तारिक हलाल ने इस अजान को स्पॉन्सर करके सदकाए जारिया कमाया है। दुआ है कि इनके इस नेक फेल से इनकी दीन और दुनिया में भलाई हो। विजिट कीजिए tarikhalal.com।

0: तारिक हलाल ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए ऑन tarikhalal.com और घर बैठे ताजा मीठा हासिल कीजिए।
1: This is Laika Radio.

0: ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ laikaradio.com ਤੇ ਅਲੈਕਸਾ ਪਲੇ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਿਸਨ ਲਾਈਵ ਐਂਡ ਲਿਸਨ ਬੈਕ ਟੂ ਯੋਰ ਫੇਵਰੇਟ ਸ਼ੋਜ਼।
1: आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ का यह स्वरूप साहस और शांति का प्रतीक है। मान्यता है कि उनकी आराधना से भय दूर होता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। माँ की घंटी का नाद सुनाएं, मन के सारे डर मिट जाएं। माँ चंद्रघंटा की कृपा हो ऐसी, हर घर में सुख शांति छा जाए। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
2: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स। स्विट्जरलैंड जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है। स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
0: Wake up, feel good. It's Donny Brasco on Breakfast.
3: Leica Radio.
0: Diamond Track of the Hour, sponsored by Malabar Gold and Diamonds. It's the season of jewelry and offers. Get free gold coins with diamond and precious gem jewelry purchases.

0: के मीलों चले न जाने जाना कहाँ है।
1: हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते,
0: बताइए हम जो चलने लगे तो सारे रास्ते चलने लगे,
1: बेहतर लगने लगे
0: और मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं कुछ कभी कभी ये रास्ते ये रिश्ते। गुड मॉर्निंग।
2: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: योजना भरपूर तवनाई और पूरी हिद्दत और पूरी जिद्दत के साथ क्यूज जवानी कदी ते हंस बोल रहे हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए जिंदगी भर इसी तरह
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Currency rate US dollar 1.32 Indian rupees mein 127 rupees 99 paise. Pakistani rupees mein 366 rupees 65 paise. Bangladeshi taka 163 taka 94 paise. Sri Lankan rupees 436 rupees 93 paise aur Afghani rupees 85 rupees 80 paise.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio. LIKA Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall वालों का पैगाम दुबई के लिए बेहतरीन ऑफर्स Emirates Airline के साथ. ये बिल्कुल नई ऑफर है. कहते हैं कि £629 per person for 3 nights. Travel by 10th December. जी हाँ, 10 दिसंबर से पहले पहले इस नई डील से फायदा उठाइए. Terms conditions apply होंगी. Emirates Airline से आपको जो है ये फ्लाई करवाएंगे दुबई के लिए. नंबर इनका है 02088434444 या विजिट कीजिए southalltravel.co.uk.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is LIKA Radio. News update.
0: और अब उर्दू की खास खास हेडलाइंस. पाकिस्तान के वजीर दाखिला ने कहा कि केपी में एमरजेंसी का निफाज सियासी मकासद के लिए अगर होता तो पहले भी किया जा सकता था. आजरबाईजान के एक स्कूल में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहरे में 37 अफराद गिरफ्तार. ईरान का अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 50 लाख टन पेट्रोलियम मसनूआत बरामद करने का दावा. बैंगन मार्गल की मौलाना यूसुफजई से मुलाकात. हूसी इंतहाशर अंगेज हरकतें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा. ईरानी क्यादत को निशाना बनाने में अमेरिका शायद हद से आगे निकल गया ट्रंप ने कहा. इख्तलाफात के बावजूद ट्रंप की हिमायत. एलन मस्क का मिड टर्म इलेक्शन के लिए $27 करोड़ का अतिया. हर्मस में टैंकर जहाज पर मिसाइल हमला हुआ यूके मेरी टाइम ट्रेन ऑपरेशंस एजेंसी ने कहा. फ्रांस की सैकड़ों सुपरमार्केट्स पर साइबर हमला. तुर्किया में सऊदी अरब के साथ खड़े रहने का अजम सदर एर्दोगान का दो टोक ऐलान. बर्तानिया में फेयरफोर्ड बेस वाकई पर ईरानी सफीर की तलबी. और राहुल गांधी की क्यादत में अपोजिशन का सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च. ये तो थी उर्दू की चंद खास खास हेडलाइंस. मजीद अपडेट जानने के लिए सुनते रहिए LIKA Radio Greater Manchester.
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
0: और अब सोने का भाव हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड का रेट हो गया 101 pounds 35 pennies. जी हाँ जी, 101.35 माफी चाहता हूँ पर ग्राम. जबकि पाकिस्तानी रुपीज में 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का रेट आज 37,200 रुपीज 37,200 रुपए.
1: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. LIKA Radio. This is LIKA Radio.
2: London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
3: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
2: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, LIKA Radio Network. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: This time of year, mom's already planning the mithai. Your auntie's counting down the days. Good thing Western Union is fast and easy because this family does not wait. Send in money directly to their bank account, mobile wallet or for cash pickup. So Diwali is exactly as it should be. Western Union, share the light like you are there. Visit participating post offices, Euro Exchange or other retail locations. Sending online, enjoy a zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: जी हाँ जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यूनो एसबीआई वालों को पैगाम, इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाएं ऑनलाइन या किसी इनकी ब्रांच में जाके। आज का रेट दे रहे हैं ये 125 रुपए 2 पैसे इंडियन रुपीज ब्रिटिश पाउंड के बदले में।
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
2: Leica Radio.
0: Greater Manchester. Leica Radio.
1: Leica Radio Greater Manchester. Leica Radio Greater Bradford. Leeds. Wolverhampton. Midland. Halifax and Huddersfield. घर पे हैं, काम पे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, डीएबी डेब रेडियो के जरिए एकदम साफ और शफाफ आवाज, क्रिस्टल क्लियर, और आपकी मोबाइल ऐप पे, घर पे, काम पे, कहीं भी। ट्यूसडे का दिन है जनाब, मंगलवार हफ्ते का दूसरा काम का दिन, मगर हफ्ते का मेरा पहला शो, मिड मॉर्निंग शो। जी हाँ, बज़्मे ताबिश। एक मसरूफ तरीन और बड़े हंगामा खेज वीकेंड गुजारने के बाद मैं हालांकि जुमे को आपसे ये इजाजत लेके और आपको बता के गया था कि मैं मंडे को नहीं आऊंगा, एक मेरी बड़ी जरूरी अपॉइंटमेंट है, लेकिन इसके बावजूद बाज नहीं आएंगे आप पूछते हुए कि कहाँ थे आप कल। अदनान ने पूछा है। अदनान देखो, मैं सब तो नहीं बता सकता मैं कल कहाँ था, लेकिन जहां कहीं भी था आप सबकी यादें मेरे साथ थी। और सबसे पहले प्रोग्राम को शुरू करने से पहले पहले सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा कर दूं नुसरत बाजी का। नुसरत महबूब हमारी सीनियर तरीन प्रेजेंटर इस रेडियो पे डे वन से प्रोग्राम कर रही हैं, और कोई टाइम कोई वक्त ऐसा नहीं है 24 घंटे में कि उन्होंने उस वक्त उस टाइम में शो ना किया हो। जी हाँ, चाहे वो ब्रेकफास्ट शो हो, मिड मॉर्निंग शो हो, आफ्टरनून शो हो, इस्लामिक शो हो, अफ्तारी के प्रोग्राम हो, सहरी के प्रोग्राम हो, इवनिंग शो हो, तमाम शो कर चुकी हैं वो, उन्हें कोई मार नहीं दे सकता। और मेरी खुशनसीबी है कि मेरी गैर हाजिरी में उन्होंने मुझे कवर किया और मेरा प्रोग्राम किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी उनका प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। नुसरत भाई जी, वंस अगेन एक बार फिर से थैंक यू सो मच।
0: ऑन लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर।
1: और मेरी डायरी के पन्ने पे तीन नामों में से एक दूसरा म्यूजिकल नाम, मौसीकी की दुनिया का बेताज बादशाह किशोरदा। किशोरदा की आज डेथ एनिवर्सरी, आज उनकी बर्सी है। 13 अक्टूबर 1987 को वो हमें छोड़ गए थे।

0: हे किशोरदा।
1: Like a radio।
0: फिल्म का नाम था जनाब आनंद और आनंद। ये वादा रहा आपसे कि आज जो आनंद आपको मिलने वाला है मेरे प्रोग्राम के आज की इस एपिसोड में, जो इस हफ्ते का पहला शो है जबकि काम के आगाज का दूसरा दिन। अगर आपका काम इस वक्त सारे दिन ड्राइव करना है तो ध्यान से गाड़ी चलाइएगा। मैंने वीकेंड पे सुना था कि 4-5 दिन के लिए M60 और M62 बंद है। तो जिन बहन भाइयों का काम दिन भर ड्राइव करना है, जरा ध्यान से फिर ना कहना ताबिश भाई ने बताया नहीं। वैसे आप भी बताया कीजिए मुझे। हाँ, जो लोग ड्राइव करते हैं दिन भर, प्लीज बताया कीजिए। ये केयर एंड शेयर होता है कि जो लोग ड्राइव कर रहे हैं उन्हें अगर आप कहीं किसी ऐसी जगह, किसी ऐसे जंक्शन पे मौजूद हैं जो बंद है या कोई ट्रैफिक है या किसी हादसे की वजह से वहाँ जो है वो ट्रैफिक नहीं चल रहा है, तो आप मुझे मुतला कर सकते हैं। ये एक अच्छी काविश होगी। प्रोग्राम की इब्तिदा रब्बे जलील के उस बाबर का नाम से जो मेरे और आपके दिलों के भेद खूब जानता है। अक्टूबर महीने की आज 13 तारीख हो गई, सन 2026 का अक्टूबर का महीना। इसके बाद नवंबर और फिर दिसंबर, फिर ये साल माजी बन जाएगा। अयाज भाई बहुत शुक्रिया भाईजान, आपकी मोहब्बत, आपके खलूस, आपके कते से प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं। आपने लिखा कि दिल में सबका अरमान नहीं होता। हाँ, बात तो सच है मगर बात है, दिल में सबका अरमान नहीं होता, हर कोई दिल का मेहमान नहीं होता। पर जो एक बार दिल में समा जाए, पर जो एक बार दिल में समा जाए वो उसे भुलाकर जीना आसान नहीं होता। वेल डन भाई, बहुत खूब, बहुत आला। प्रोग्राम के पहले इससे की लास्ट ब्रेक।
1: Like a radio।
2: I can't wait for our holiday. Sun, sea, no work.
3: Same, but how are we supposed to use our phones abroad? Roaming costs a fortune.
2: Not with SIMSy. You get data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
3: And I can keep my number for WhatsApp and bank OTPs. Exactly. Plus, it's flat rate, so no bill shock and you're ready in just 3 minutes.
2: Brilliant. And there's 10% off with Roam Free 10.
3: SIMSy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at SIMSy.com. Terms apply.
4: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
5: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
6: Something new has just landed at Cake Box. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized cake box straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only. Wherever they are, be part of their celebration. Cake Box Celebrations, now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.
7: Sunshine, skyscrapers and souks.
8: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
7: Flying direct with Emirates, so you can enjoy 3 nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
8: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
7: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
8: Southall Travel. At all prices.
9: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
10: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
9: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
11: A अपने कारोबार को अक्रॉस ग्रेटर मैनचेस्टर पहुंचाना चाहते हैं तो इसे लाइक रेडियो मैनचेस्टर पर जो साउथ एशियन कम्युनिटी के सीने में दिल बन के धड़कता है एडवर्टाइज करके सैकड़ों लिसनर्स तक रोजाना पहुंचाइए। लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर ईमेल sales@likeamedia.co.uk और कॉल नंबर इज 01612508222 दैट इज 01612508222 लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर आपकी कम्युनिटी आपका स्टेशन।
12: Punjabi Hit of the Hour with Tabish.
0: Right, जनाब वेलकम बैक और अब ताबिश की डायरी के पन्ने पे तीसरा म्यूजिकल नाम 60s और 70s की सुपरस्टार yeah.

0: Mica Radio.
1: एकदम राइट आंसर फरजाना बहन और फरीद हुसैन भाई कहते हैं ताबिश भाई प्रोग्राम का पहला हिस्सा है यार, क्यों अपनी शादी याद दिला रहे हो आप? आपने पूछा किसकी शादी का गीत है ये? भाई है अब मैं ऑन एयर नहीं बता सकता। हाँ बहरहाल जी, मजाक के अलावा सीरियस बात, आज हमारी डायरी के पन्ने पे 13 अक्टूबर इस डेट के हवाले से तीन बहुत बड़े म्यूजिकल नेम लिखे हुए हैं जनाब। सबसे ऊपर हमारे पास टॉप पर नाम लिखा था उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का। काश आज वो हम में होते। उनकी तारीख पैदाइश लिखी है हमारी डायरी के पन्ने पे 13 अक्टूबर 1948, पाकिस्तान बनने के एक साल बाद फैसलाबाद में पैदा हुए थे। कव्वाली के शहंशाह, अगर आपकी पसंद का कोई गीत, कोई कव्वाली, कोई नगमा आप सुनना चाहें उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को, तो आप मुझे फरमाइश कर सकते हैं। और दूसरा बहुत बड़ा नाम, एक और पाकिस्तानी नाम, 60s और 70s की हुसन की मलिका मुसर्रत नज़ीर, अदाकारा, गुलूकारा, कमाल की खातून, बड़ी बाहिम्मत और बड़ी जफाकश। अपने अहद शबाब में और अपने उरूज के दौर में अचानक इंडस्ट्री छोड़ के कनाडा चली गई थी, बताइए। फिर बैक टू पवेलियन वापस आई एक मरतबा, फिर अपने हुस्न का जलवा दिखाने, उसके बाद फिर वो सिंगर बनकर आई। पीटीवी का वो जमाना 80s का आपको याद होगा, VCR का जमाना। जी हाँ जी, मुसर्रत नज़ीर की पैदाइश भी मेरे पास यहाँ लिखी है, 13 अक्टूबर 1940 को लाहौर में पैदा हुई थी। और अब आतिफ असलम का ये गीत लेके जाएगा मुझे 11 बजे की खबरों की जानिब। और कहते हैं कि गम आदत बन जाए तो तबीयत अक्सर खराब रहती है।

अब तो आदत सी है मुझ में तेरे बिना जीने की, जुदा होके भी। सॉन्ग डेडिकेट करेंगे लैला को। लैला हमें सुन रही है, वीकेंड पे उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी। लैला थैंक यू, गेट वेल सून। तुझ में क्या देखा है वक्त मिला तो सोचेंगे। और क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे।

0: जागे जागे जागे अरमा और जागे जागे कुछ हम और कुछ तुम। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के बेक टू बेक दो गानों में दूसरा गाना शिराज भाई आपके नाम और लम्मी और पहला वाला पहला सॉन्ग था जी अलका याग्निक का, फिल्म का नाम था राज और बड़ी राजदारी से हम नाम करेंगे अदनान के रोज डेल में उस पहले गीत को। अदनान कहते हैं ताबिश भा, मुझे मेरे मैट्रिक के जमाने का पहला प्यार याद आ गया। नदीम अजहर बाजवा हमारे साथ में बोल्टन में कहते हैं ताबिश भाई आपके प्रोग्राम में एक बात तो है भाई, कोई माने ना माने बंदा जरा सा भी लेजी हो रहा हो ना तो आप उसकी लेजीनेस फौरन खत्म कर देते हैं।
1: Even at Tabish, rolling out your favorite hits across the northwest. This is like a radio, Greater Manchester.
0: अच्छा भाई अगर इस तरह से है तो फिर ठीक है। नहले पे दहला, चौके के बाद झक्का, यह है बज़्मे ताबिश जो कि ऑफिशियल मिड मॉर्निंग शो हुआ करता है मंडे टू फ्राइडे रोजाना लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर से। मेरे तमाम लाडले चहीते और तमाम मोहब्बत करने वाले प्यार करने वाले, अगर नफरत भी कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बताए

0: ऐसा लगता है जैसे मौसम खुशबू बाद सभा चांद शफक और तारों में कौन तुम्हारे जैसा है।
1: हलचल है
0: वक्त मिला तो सोचेंगे
1: पागल है हंसता है रोता है दिल में कुछ होता है
0: दिल में कुछ कुछ होता तो होगा। हाँ ये दिल कम वक्त हमेशा जवान रहता है, आपको बताऊँ इसकी बैटरी चार्ज रहती है हमेशा। शुक्रिया मलिका आप हमारे साथ हैं, थैंक यू, आपने हमें कल मिस किया था। हमजा कहते हैं मैंने भी कल आपको बहुत मिस किया था, कोई बात नहीं यार। शमीम बानो बेगानी आपका बहुत शुक्रिया, गुलाम अली भाई के मेहमान आए हुए हैं, उन्हें खाना खिलाने ले जा रहे हैं आप। लीड्स में मजर भाई एंथनी भाई का गाना आ रहा है, ब्रेक के बाद एंथनी भाई आपकी फरमाइश।
2: ये है लाइका रेडियो। Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
3: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
4: Dubai is the place. 11, 11.
3: Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
5: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
6: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
7: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
6: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
7: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
6: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio Network. Sunshine, skyscrapers and souks.
8: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
9: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
8: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
9: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
8: Southall Travel. At all protected.
10: इंग्लैंड में हम पानी को उससे ज्यादा तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं जितनी तेजी से कुदरत उसे पूरा कर सकती है। अगर कुछ तब्दीली ना हुई तो 2055 तक हम रोजाना 5 बिलियन लीटर से ज्यादा पानी की कमी का सामना कर सकते हैं। और वेल्स में ज्यादा बरसात वाली सर्दियां और ज्यादा खुश्क गर्मियां पानी के जखीरे पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अक्सर लोग समझते हैं कि हम रोजाना तकरीबन 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत इससे काफी ज्यादा लगभग 140 लीटर के करीब है। हम सब कुछ आसान तब्दीलियां करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। छोटी शावर लें, लीक होने वाले नल या टॉयलेट को ठीक करवाएं, बर्तन धोने के लिए नल खुला रखने की बजाय एक बाउल का इस्तेमाल करें, डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड का इस्तेमाल करें। पानी कीमती है, इसे महफूज रखने के लिए हमें कम इस्तेमाल करना होगा। लेट्स सेव वाटर को सर्च करें या letssavewater.com पर जाकर रोजाना पानी बचाने के आसान तरीके जान लें।
11: आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ का ये स्वरूप साहस और शांति का प्रतीक है। मान्यता है कि उनकी आराधना से भय दूर होता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। माँ की घंटी का नाद सुनाएं, मन के सारे डर मिट जाएं। माँ चंद्रघंटा की कृपा हो ऐसी, हर घर में सुख शांति छा जाए। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
12: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका Brought to you by Star Tours. Switzerland जाना है तो Star Tours के साथ ही जाना है. Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
13: Tasty track of the hour. Brought to you by Coca Noodles.
0: और वेलकम बैक खवातीन हजरत, अब हम जा रहे हैं इस गाने को लेके वारिंगटन। एंथनी भाई, एंथनी भाई अकेले अकेले रजामंद कर लिए भाई, यार हमें भी बुलवा लेना प्लीज यार, भले कार्ड मत भेजना, खाली पता बता देना, हम सब आ जाएंगे।

0: बुलंद कर ली।
1: हाँ, मैंने तो किस्मत बुलंद कर ली।
0: मैंने एक लड़की पसंद कर
1: ली। और अंतन भाई ने एक लड़की पसंद कर ली।
0: बंद कर ली उड़ती चिड़िया पिंजरे में।
1: ओह माय गॉड, उड़ती चिड़िया।
0: मैंने एक लड़की पसंद।
2: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: जनाब, US डॉलर 1.3132, इंडियन रुपीस में 127.99, पाकिस्तानी रुपीस में 366.65, बांग्लादेशी टका 163.94, श्रीलंकन रुपीज 436.93 और अफगानी रुपीज 85.80 का।
3: Like Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: LIKA Radio.
1: और नेल्सन से खालिद महमूद भाई, आपकी फरमाइश।

0: राइट जनाब, ये हैं उस्ताद के उस्ताद कव्वालियों के शहंशाह, मुसीकी की दुनिया का बेताज बादशाह। हाय, बड़ी जल्दी हमें छोड़ के चले गए उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब। मेरे तमाम चाहने वालों के नाम ये गाना है।
1: Is Leica Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio. Leica Radio. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: Right, जनाब, सोने का भाव हमारे यहाँ जो खवातीन सोना बहुत पसंद करती हैं, उन्हें बता दें कि सोना रोज महंगा हो रहा है। हमारे यहाँ 1 ग्राम गोल्ड की कीमत आज है 101.55 यानी 101 पाउंड 55 पेनी पर ग्राम, जबकि पाकिस्तानी रुपीज में 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का भाव आज हो गया 37,200 रूपए 37,200 रूपीज।
1: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी, हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट। विजिट hartihanks.com।
2: ये है लाइका रेडियो।

0: रेडियो की पॉडकास्ट अपडेट एपिसोड नंबर 37 और इसे होस्ट कर रहे हैं सैंडी शाह और साथ उनका निभाएंगे सामने बैठेंगे हॉट सीट पे राज बदन, हमारे सीईओ दीप राजा, विश भटनागर और टाइटल ये है जिस मौजू पे वो बात करने वाले हैं वो है जी लाइक अ मैन अनफिल्टर्ड।
1: लाइक है एक्स्ट्रा इज Like a radio.
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.

0: है इतनी जोर से कड़की बिजलियाँ। लोगों को बारिश क्यों पसंद होती है भाई? हालांकि यहाँ यूके में या दुनिया भर में कहीं आप देखें फॉरेन कंट्रीज में लोग बारिश को इतना लायक नहीं करते, मगर हम इतनी क्या रिश्ता है बारिश से मेरा और तुम्हारा। मैंने कहा था ना कि तुझमें क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। और क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो
1: like a radio.
0: वक्त मिला तो सोचेंगे। मौसम खुशबू बारिश हवा चांद शफक और तारों में कौन तुम्हारे जैसा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। बहुत बड़ी गजल है, इसका एक एक शेर आपको हर गाने के बाद बताऊंगा सुनाऊंगा। कजूरी जी थोड़ी सी अपसेट हैं तबीयत के हवाले से। कजूरी जी आप हमारी बहुत रेगुलर और बड़ी लाडली मेरी जो है वो आप लिसनर हैं और बड़ी अहमियत है मेरे प्रोग्राम में आपकी। ऊपर वाला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, गेट वेल सून। बस अपनी खैरियत से मुतला करते रहा कीजिए। तमाम साथियों का शुक्रिया। काम पे पहुंच गई रुखसाना आमिर, जाते जाते मैं आपको विश नहीं कर सका, आई एम सॉरी। और शमीम बानो बेगानी ने हमें वॉइस मैसेज किया था, बड़ी नटखट सी है हमारी बहन। अच्छा लगा आपका मजाक, कोई बात नहीं, बहनें अगर भाइयों से मजाक नहीं करेंगी तो फिर किससे करेंगी हैं। आज के हमारे प्रोग्राम की प्लेलिस्ट बहुत अच्छी लग रही है। 3 दिन की कसर निकाल रहे हो ताबिश भाई, ये पैगाम भेजा है कराची से फरीद भाई आपने। अच्छा जी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, लंदन में हमारे साथ निभा रही हैं आज बहुत दिनों के बाद, अक्सर निभाती हैं अक्सर भूल जाती हैं। हमीदा जी, हमीदा नाज लंदन में हमारे साथ होते हैं। इम्तियाज भाई, उनकी पत्नी सनोबर, हमारी भाभी और युगेश भाई, हमसे हमारे साथ हैं। कह रहे मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट टाइम। यार कितनी देर से नाश्ता करती हूँ, दोपहर का खाना फिर कब खाओगे भाई? भाई नईम मलिक और वकार अंकल आपका बहुत शुक्रिया। और मिस करने की बात हो रही थी तो पता नहीं किस किस ने मुझे लिख के भेजा, मैंने भी मिस किया था, मैंने भी। अच्छा किसने? अयाज चौधरी भाई कहते हैं यस मैंने मिस किया। हमजा कहते हैं मैंने मिस किया। आसिया फैन कहती है मैंने भी मिस किया। साजिद अजमरो कहती है मैंने भी मिस किया।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: हाँ जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और योनो SBI वाले का पैगाम, इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाएं ऑनलाइन या इनकी किसी ब्रांच में जाएं। आज का रेट दे रहे हैं ये ब्रिटिश पाउंड के बदले में इंडियन रुपीज 125 रुपए 5 पैसे।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. We are Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Greater Manchester. Ibanet Tabish on the mid-morning show.
2: Leica Radio.
0: और थोड़ी सी देर आपको अब इसी मूड में रखेंगे जिस मूड को हमने स्टार्ट किया था, स्टार्ट प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको उसी मूड में रखता हूँ थोड़ी सी देर। क्या ख्याल है आपका? वापिस आके फिर है ना हमारी डायरी के बनने पे 3 बहुत बड़े नाम, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का कोई गीत आप सुनना चाहें तो फरमाइश कर सकते हैं, बुसरत नजीर जी का और किशोर कुमार का। Once again, Kumar Sanu. Hey.

0: दीवानगी की हद तक
1: तो मैं बेखबर था।
0: इंसान बहुत सारी बातों से बेखबर होता है, मगर
1: अब मैंने जान
0: कहीं ना कहीं उसके जहन में कुछ घंटियां बज रही होती हैं। गेटली में इस गाने को नाम करेंगे अहमद के। अहमद, हाउ आर यू ब्रो? और जमशेद चौधरी भाई कहते हैं स्टॉकवुड से कि आई एम एग्री विद फरीद भाई। रियली जब से मैं तुमसे मिला हूं
2: ये है लाइका रेडियो।
3: का मौसम अपने साथ बहुत सारी मस्ती और खुशियाँ लेकर आता है और ये वक्त यकीनन आप अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहेंगे, लेकिन ये मौसम अपने साथ फ्लू, आरएसवी और कई दूसरे वायरसेस भी लेकर आता है जो आपको गंभीर तरीके से बीमार कर सकते हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल जाने की नौबत आ सकती है। शुक्र है कि इनसे बचाव के लिए वैक्सीन मौजूद हैं। बच्चों से लेकर नौजवानों तक और बुजुर्गों से लेकर उन लोगों तक जिनको खुसूसी एहतियात की जरूरत है, जैसे कि हामला खवातीन। कौन और कैसे इन वैक्सीन को ले सकते हैं, इन मालूमात के लिए सर्च कीजिए NHSGM विंटर वैक्सीनेशंस, दैट इज NHSGM विंटर वैक्सीनेशंस।
4: Sunshine, skyscrapers and souks
5: for less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
4: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
5: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
4: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
5: Southall Travel. At all protected.
6: This time of year, mom's already planning the mithai. Your auntie's counting down the days. Good thing Western Union is fast and easy because this family does not wait. Send in money directly to their bank account, mobile wallet or for cash pickup. So Diwali is exactly as it should be. Western Union. Share the light like you are there. Visit participating post offices, Euro Exchange or other retail locations. Sending online? Enjoy a zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third party charges may apply.
7: Passports, tickets, kids' tablets.
8: All packed. But what about our phones? We'll need them for maps, WhatsApp, photos.
7: And checking in with grandma.
8: Exactly. Roaming abroad can get expensive.
7: That's why I got Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
8: So we can keep our numbers for WhatsApp and bank OTPs?
7: Yep. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
8: Holiday sorted.
9: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
10: Darling, it's my last season of Coffee with Karan. Why would I do anything controversial? Just trust me. Yeah? Okay. Yeah, love you too.
11: Coffee with Karan Season 9. Watch it from 14th October. Only on Jio Hotstar.
12: Punjabi Hit of the Hour with Tabish.
0: Right, Janab. Welcome and welcome back. आज हमारी डायरी के पन्ने पे तीन बहुत अहम नाम लिखे हैं, आप भूल तो नहीं गए। अगर आपने अभी अभी लाइक रेडियो सुनना शुरू किया है तो सबसे पहले खुशामदीद। लाहौर से ताबीर, खुशामदीद, वालेकुम सलाम, जीती रहो। तीन बहुत म्यूजिकल नाम, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, मुसरत नजीर और किशोरदा। अच्छा, वैसे पता है आपके साथ भी ये तजर्बा हुआ होगा कि अचानक आपको लगता है कोई आपका ताकुब कर रहा है, कोई आपके पीछे पीछे आ रहा है। क्यों आ रहा है? शायद कुछ मिस हो गया है, कोई चीज हाथ से छूट गई है।

0: my God. जी जरा नजर बचा के जरा निगाहें खोल के आंखें बड़ी बड़ी आंखों वाली है। मेरा लौंगा वाचा गीत को नाम करेंगे हम शुमाइल नवीद आपके, लेला आपके, शहजाद भाई आपके, जरीन आश्टन में।
1: वेलकम टू आवर न्यू लिसनर्स इन ब्रैडफोर्ड, हडर्सफील्ड एंड लीड्स।
0: और अब उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब हमें लेके जा रहे हैं 12 बजे की खबरों की जानिब। अदनान तुम्हारी फरमाइश थी भैया भाई, इश्क का रुतबा।

0: बात यह है कि जीवन में, जिंदगी में इंसान किसी को चाहे, मोहब्बत करे, जरूरी नहीं कि उसके लिए इंसान देवदास बन जाए, मगर वो प्यार का दिया जो पहली दफा जलता है, वो दिया फिर नहीं बुझता। गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग कहेंगे आप तमाम साथियों को प्रोग्राम के तीसरे हिस्से का क्लाइमेक्स टाइम। बैक टू बैक दो गाने आपने सुने, उसके बाद गजल। इस हफ्ते की पहली गजल जो आप सुनेंगे रोबिन भाई उठ गए। रोबिन भाई गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। बर्तानिया का मियारी वक्त, मंगल की सुबह, सुबह के 7:15 बज रहे हैं न्यूयॉर्क में और हमारे यहाँ 12:15, पाकिस्तान के 4:15 और इंडिया में 5:45।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
2: Ye hai.
3: Laika Radio.
4: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit Ambala.
5: The buy is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11.
4: Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place. 11, 11.
4: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
6: Danu 11, 11. Danu Properties.
1: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागासन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट रागासन.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।

0: से निराला।
1: मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी।
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
3: Discover the magic of India with Tickets to India. Whether you're planning your next adventure or a trip back home, you've got unbeatable deals waiting for you. Book online at ticketstoindia.co.uk or call 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
4: Your Guzzle hit plays now on Leica Radio, Greater Manchester.
5: राइट जनाब, वेलकम बैक खवातीन हजरात, बहनों और भाइयों। आज हमारी डायरी के पन्ने पे तीन बहुत बड़े म्यूजिकल नेम लिखे थे जी, मौसीकी की दुनिया के तीन बहुत बड़े नाम, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब और भारत से बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर किशोरदा और मुसर्रत नजीर के साथ साथ उस्तादों के उस्ताद, कव्वालियों के शहनशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब। एक बड़ी दर्दनाक गजल, इस हफ्ते की पहली गजल।
6: अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी।
5: चलो आओ मिलके अपनी अपनी कहानियां याद करते हैं।

जिंदगी तू ही मुख्तसर हो जा। लेकिन बात तो कहानी की है, अपनी अपनी कहानियां हैं सबकी, मगर ये जालिम दुनिया किसी की कहानी तो सुनती है मगर किसी का सहारा नहीं बनती।

0: कहते हैं कि खुद पर यकीन होना चाहिए, खुद पर यकीन होना चाहिए, सहारे तो बेसहारा करते हैं साहब। और कुछ इसलिए भी तुमसे मोहब्बत है मुझको दोस्त, कुछ इसलिए भी तुमसे मोहब्बत है मुझको दोस्त, मेरा तो कोई नहीं, मेरा कोई नहीं है, तुम्हारा कोई तो है। और इससे पहले कि तुझे और सहारा ना मिले, इससे पहले कि तुझे कोई और सहारा ना मिले, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, जब तक मेरे जैसा ना मिले। और कहते हैं कि हम तो एक सहारा थे, हम तो एक सहारा थे, मोहब्बत तो कोई और था। बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। वो क्या खूब कहा था मोहसिन ने कि कितना कुछ हो गया मोहसिन, कितना कुछ हो गया मोहसिन, लेकिन उससे एक शख्स से नफरत न हुई।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: करेंसी क्रिएट यूएस डॉलर 1.32 इंडियन रुपीज में 127.99 रुपए, पाकिस्तानी रुपीज में 366.65 रुपए, बांग्लादेशी टका 163.94 रुपए, श्रीलंकन रुपीज 436.93 रुपए और अफगानी रुपीज 85.80 रुपए।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is the LIKA Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall वालों की तरफ से बिल्कुल brand new deal है जनाब, 629 per person, यानी 629 £629 per person में कहते हैं 3 night और travel by 10 December तक इसकी ये offer है। 10 December से पहले पहले आपने ये नई deal जो है book करा लीजिए और Emirates Airlines से ये जो है आपका tour होगा। इसका ख्याल रखिएगा, number है इनका 0208884343। विजिट कीजिए southalltravel.co.uk।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
0: और सोने का भाव हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड का रेट हो गया जनाब 101.35 यानी 101.55 पर ग्राम। और पाकिस्तानी रुपीज में 24 के रेट 1 ग्राम गोल्ड का भाव आज 37,200 रुपए, 37,200 रुपीज।
1: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी, हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट। विजिट hartyhanks.com.
0: Right, जनाब 12:30 बज गए, पूरे के पूरे प्रोग्राम के तीसरे हिस्से का आधा हिस्सा मुकम्मल। बर्तानिया का मियारी वक्त दोपहर के 12:30, पाकिस्तान में 4:30, इंडिया में 5 बज गए और न्यूयॉर्क में रोबिन भाई के शहर में 7:30। एक लाइव रीड बड़ी इंपॉर्टेंट, लाइव LIKA Radio Network teams up with the South Asian Film Festival for 3 blockbuster films. ये 3 फिल्में ब्लॉकबस्टर, ये एक फिल्मी मेला कह सकते हैं आप इसे, कि कोई फिल्में पुरानी होती हैं जो दोबारा लगती हैं, एक ये भी एक फेस्टिवल का एक हिस्सा है। 11 अक्टूबर को संडे को फिल्म लगी थी कभी खुशी, अब माफी चाहता हूँ कभी कभी ऑन संडे 11 अक्टूबर को, क्योंकि ये बिग बी अमिताभ बच्चन की बर्थडे थी भाई संडे को, हाय मैं नहीं था। बहरहाल मैंने उन्हें ट्वीट कर दिया था उनके पर्सनल उस पे अकाउंट पे। और दूसरी फिल्म लग रही है इसी सिनेमा में जनाब, ये है शोकेस सिनेमा में, आपको बताएं आपके नजदीक तरीन शोकेस सिनेमा में होगी। 18 अक्टूबर को दूसरी फिल्म लगेगी दिल चाहता है, बुक योर टिकट एट showcasecinema.co.uk।
2: Laika Radio.
1: Herald new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: Sunshine, skyscrapers and souks
4: for less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
3: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
4: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
3: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
4: Southall Travel. At all protected.
5: Something new has just landed at Cake Box. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized cake box straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only. Wherever they are, be part of their celebration. Cake Box Celebrations, now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.
6: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
7: Diwali is approaching and is your business ready? Sadia Wholesale has your Diwali essentials covered, so stock up and get ready to celebrate. Get in touch today, info@sadia.co.uk or give us a call on 0203 048 4848. On behalf of Sadia Wholesale, happy Diwali.
1: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Advertise your service here. 0161 250 8222. Laika Radio, Greater Manchester. A Laika Radio classic. Plays now.

0: वफाएं करना कोई आसान काम होता है क्या। फिल्म का नाम था शालीमार और किशोर दा की आज बरसी के मौके पे हमने इस सॉन्ग को आपके लिए पेश किया।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: All right, जनाब, State Bank of India, यानी कि जिनकी कंपनी यहाँ पे है UK भर में, इनकी बेशुमार ब्रांचेज हैं। Yono SBI मोबाइल ऐप UK के जरिए अपने प्यारों को रकम पहुंचाएं ऑनलाइन या कि इनकी किसी ब्रांच में जाएं। आज के रेट ब्रिटिश पाउंड के बदले में इंडियन रुपीज 125 रुपए 5 पैसे का।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy to let mortgages and safe deposit lockers. Visit SBI UK.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Like a radio.
0: तो मैम, साथी दोस्तों का बेहद शुक्रिया। लंच टाइम हो गया और गुलाम अली भाई अपने मेहमानों को मजे मजे के खाने खिला रहे हैं। दावतों का सिलसिला है। हम भी बड़े बिजी थे भाई, वीकेंड पे खूब दावतें खाई हैं हमने। हाँ, कल का जो है बहुत सारे लोग बार बार पूछ रहे हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, कोई ना कोई एक अपॉइंटमेंट होती है आपकी जिंदगी में जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसे आप मिस नहीं कर सकते। लिहाजा ऐसे ही मैं फिर कल छुट्टी पे था भाई। हाँ, आसिम ने बड़ी अच्छी बात कही, कहेंगे ताविश भाई होनी चाहिए, एक आध छुट्टी होनी चाहिए, जिसे किसी जमाने में लोग स्कूल से उड़ी मारा करते थे। आज के तमाम गीत सुपर लगे हैं, सुपर सॉन्ग। खालिद महमूद भाई कहते हैं नेल्सन में, गुलाम अली भाई कहते हैं ब्यूटीफुल चॉइस आज की ताविश भाई। नई मजहर बाजवा कहते हैं यार कोई एनर्जी ड्रिंक ले लो ताविश भाई, मुझे जरूरत नहीं है भाई, मेरे अंदर एनर्जी 24 घंटे रहती है। अदनान आपको शुक्रिया हमारे साथ रहे। आसिया जी की एक पसंद आई है साहब, हमारी बहन की रॉजडेल से। आसिया जी देखते हैं थोड़ी सी देर में, नो प्रॉब्लम। उस्तादों के उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की आवाज का कौन सा गीत है मुझे बताएं, कौन सी गजल, कौन सा उनका फोक गीत है या रिलीजियस उनकी कोई नात है या कव्वाली है जो आपको पसंद ना हो। इम्पॉसिबल, क्या ख्याल है। चलिए जी, एक और पसंद आ गई हमारे पास, उस्ताद की आवाज प्रोग्राम में शामिल करते हैं। वक्त कम है और मुकाबला सख्त।
1: द पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप। लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज।
0: बड़ा खूबसूरत गीत है साहब, कहते हैं कि आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए। रियली नाइस चॉइस आसिया बहन।

0: प्रोग्राम ते तेरी कसम 1982 की फिल्म से गीत अमित कुमार की आवाज में। लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर द मैगजीन शो के साथ रवीना खान आपके लिए अभी तक मैं 3 गाने प्ले कर चुकी हूँ, 2 बैक टू बैक और अभी ये बॉलीवुड का क्लासिक सॉन्ग। बहुत कुछ बाकी है। आज उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की बर्थडे भी है तो उस हवाले से भी बात होगी और उनकी गाई हुई बेशुमार काम है उनका, इतना ज़्यादा है कि अभी तक सुनने में ये आया है कि उनकी तमाम गज़लें कव्वालियाँ और उनका जो सरमाया है फ़न की दुनिया में वो अभी तक हम पूरा लोगों तक पहुँचा भी नहीं पाए हैं, इतना काम किया है उस शख्स ने। आप बताइएगा कि आपकी कौन सी फेवरेट कव्वाली या गजल रही है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की आवाज में जो आप हमेशा सुनना चाहते हैं, या कौन सी ऐसी चीज है जो आपको हमेशा याद रहेगी और आप उनके लिए बहुत ही अच्छे जज्बात रखते हैं। कौन सी कव्वाली, कौन सी गजल? अगर मैं कहूँ तो मुझे आज से जब से मैंने ये कव्वाली सुनी है बहुत ही टाइम हो गया है, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आके देखो, तो ये हमेशा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरी चॉइस रही है। आपकी चॉइस क्या रही है ये आप बताएंगे, और बताने के लिए नंबर है 07703403020 पर आपके मैसेजेस। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान मरहूम के गाए हुआ कौन सा कलाम आपको बहुत पसंद है लिख के भेजिएगा। अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कैसरी फिल्म से 2019 की फिल्म थी, अरिजीत सिंह की आवाज, असीस कौर उनके साथ साथ।
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Magazine Show with Robina Khan.
1: So, जी 90s रुपए का भी आप सुन रहे थे और इसमें एक अच्छी आवाज नहीं थी, बहुत सी खूबसूरत आवाजें थी, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, कुमार सानू. सो फिल्म का नाम था आंखें और 90s रुपए था, तो 1993 की फिल्म से इस गीत को हमने आपके लिए दिया. और जो हम आज बात कर रहे हैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के बारे में कि उनकी आज बर्थडे है, 78 ईयर्स की आज बर्थडे की सेलिब्रेशन हो रही है दुनिया भर में, जहां भी जहां जहां किसी को उर्दू आती है. और कहा यह जाता है कि ना सिर्फ ये कि म्यूजिक सिर्फ किसी जुबान से समझ आता है, बल्कि वो लोग जो नहीं भी समझते उनकी कवालियों पे सर धुनते रहे हैं, यानी वो लोग जिनको उर्दू का पता भी नहीं है, लेकिन वो जो आवाज़ के पिच है, वो जो आवाज में इमोशंस हैं और जो गायकी का अंदाज है, वो टॉप क्लास रहा. और इसी वजह से सारे के सारे जो कॉन्सर्ट थे वो लूटते रहे और लोग उनको याद ही रखेंगे. बिल्कुल सही बात आप लोग मैसेजेस में लिख रहे हैं कि हम कौन सी जो उनकी एक कवाली या एक गजल की बात करें, सभी कुछ लाजवाब है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा ही है. लेकिन कुछ तो होता ही है ना कि कोई आपके बहुत ही आपके जहन या आपके दिल के करीब कोई ना कोई कलाम होता है, सो वो हमेशा के लिए आपका फेवरेट होता है. सो बहुत से लोग लिख भी रहे हैं और मैं आपको नाम के साथ मेंशन भी करूंगी, लेकिन फिलहाल हम आपको लेके जा रहे हैं महनाज बेगम की आवाज की तरफ फिल्म आईना के लिए.
0: द पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप. लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज.

0: UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: तो जी अगर आप इंडिया मनी सेंड करना चाहते हैं तो आज आपको 1 पाउंड का एक्सचेंज रेट मिलेगा 127.99 एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन या फिर एसबीआई योनो मोबाइल ऐप के जरिए भी आप मनी सेंड कर सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होंगे
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with Robina Khan.
2: Like a radio.
0: Like a radio.
1: लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर की आवाज अब तक पहुंच रही है मैं रुबीना खान और द मैगजीन शो आप सुन रहे हैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के हवाले से आपके मैसेजेस मिल रहे हैं और आज बड़ा खास दिन है कि उनकी 78th बर्थडे की सेलिब्रेशन है और ये सेलिब्रेशन मेरा ख्याल नहीं है कि सिर्फ मैनचेस्टर ग्रेटर मैनचेस्टर या यूके में होंगी दुनिया भर में जहां भी आवाज और साज का रिश्ता है वहां पर आज लोग उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को याद कर ही रहे होंगे ये पॉसिबल ही नहीं है एक बहुत बड़ा फनकार एक बहुत बड़ा इंसान 13th of October, यानी आज के दिन 1948 को पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में उन्होंने आग खोली और मौसीकी के एक बहुत ही नामवर घराने से उनका ताल्लुक था जैसा कि पता है कि नुसरत उनका अपना नाम था फतेह अली खान उनके फादर का नाम था मैं अक्सर सोचती हूँ इनके बारे में आप कितनी भी डिटेल हैं आप कहीं भी पढ़ सकते हैं लेकिन आप क्या सोचते हैं लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा अरसा उनकी ज़िंदगी नहीं थी उस अरसे में भी उन्होंने यानी कि बहुत देर जिंदा नहीं रहे बहुत जल्द उस दुनिया से चले गए दुनिया तो है ही फानी जितने भी काम हैं जो बड़े लोग हैं बड़े फनकार हैं उन्होंने बहुत जल्दी में ही किए हैं इसका अंदाज़ा नहीं है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिनको हर वक्त दिन रात काम में मशगूल रखती है वरना इंसान की और भी एक्टिविटीज होती हैं एज अ ह्यूमन बीइंग सिर्फ एक अगर फनकार है या एक गायक है तो हमेशा तो एक गायक नहीं होता ना उसको और भी बहुत से काम होते हैं लेकिन जब हम इनकी गजलें कवालियां उठाकर देखते हैं तो हमें लगता है कि इनकी सारी जिंदगी शायद कोई बहुत दूसरे कामों में नहीं गुजरी हर वक्त ये या तो रियाज करते होंगे या गाते होंगे 17-18 मिनट की कवालियां लेकिन अभी मैं जो गीत आपको सुनवाऊंगी आपको पता है प्लेबैक सिंगिंग भी इंडिया पाकिस्तान के फिल्मों के लिए भी उन्होंने गाया है तो अभी कुछ ही देर में आपको धड़कन फिल्म का गीत सुनवाऊंगी यानी फिल्म हो या कुछ भी हो स्टेज हो एक ही नाम
3: is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan. Locate, design, manage, cater.
5: No, sorry, mate.
6: No, we don't have that part.
5: Have you tried down the road?
7: We can get it in, but it might be for a few days.
8: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving. With 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorized repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
9: Khakra crunch, bhakri munch, chicky sweet, papad beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
10: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
9: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
3: Discover the magic of India with Tickets to India. Book online at ticketstoindia.co.uk or call 0208-518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
11: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
12: In England, we're using water faster than nature can replace. If nothing changes, by 2055, we could face a daily water shortfall of more than 5 billion litres. And in Wales, wetter winters and drier summers are putting pressure on the water supply. Most of us think we use around 30 litres a day, but the reality is closer to 140 litres. We can all help to save water by making simple changes. Take shorter showers. Fix leaking taps or toilets using a washing up bowl instead of running tap, and switch to eco mode on your dishwasher or washing machine. Water is precious. To protect it, we all need to use less. Search Let's Save Water or visit letssavewater.com for easy ways to save water every day.
0: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
13: आप लोगों का वीकेंड और भी सुहाना द ऋतु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.

0: वेदर रिपोर्ट, वेदर फोरकास्ट सुन लीजिएगा। मैनचेस्टर, ग्रेटर मैनचेस्टर में इस वक्त सनी इंटरवल है और बिल्कुल क्लियर एंड ब्लू स्काई है। 17 डिग्रीज आज के दिन का हाईएस्ट टेम्परेचर इस वक्त हो चुका है। 8 डिग्रीज विल बी द मिनिमम टेम्परेचर और लीड्स में 17 एंड 7 के दरमियान टेम्परेचर रहेगा। वहां पर भी सनी इंटरवल्स के साथ साथ हल्के बादलों की भी फोरकास्ट है और यही सूरत हाल ब्रेडफोर्ड में रहेगी, जहां 17 एंड 7 डिग्रीज के दरमियान टेम्परेचर रहेगा, मॉडरेट ब्रीज। और ये थी सूरत हाल वेदर वाइज।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161 250 1250.
0: तो जी, प्रोग्राम की सेकंड आवर का आगाज हो भी चुका। अभी आपको दो गीत सुनवाऊंगी एंड 2:30 पर खबर पर नजर, और इसके साथ ही आपके बहुत से मैसेजेस, बहुत सी जबरदस्त प्लेलिस्ट। इसमें अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं 07703 40 30 20।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, Greater Manchester, a new Asian sound for the northwest of England. 963 AM and 1377 AM. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Leica, the magazine show with.

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.
1: सजना वे कदी पुछता ले मेरा हाल तू कमला कीता है नैन तेरे तो हट दे नहीं मैनू पूरा पागल कीता है

0: गीत सुन रहे हैं नज्म नज्म बरेली की बर्फी। आर्टिस्ट का नाम है, सिंगर का नाम है आर्को प्रेबो मुखर्जी, खूबसूरत नाम है।
1: ये है Like a Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: So, जी, आपने मनी कहीं पे भी सेंड करनी हो, एक्सचेंज रेट तो चाहिए होता है। आज US डॉलर आपको मिलेंगे 1 पाउंड के एक्सचेंज में 1.32 डॉलर्स, इंडियन रुपीज 127.99, पाकिस्तानी रुपीज 366.65, बांग्लादेशी टकर्स 163.94, श्रीलंकन रुपीज 436.93, अफगानी 85.80 अफगानी।
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio. Leica Radio. A Leica Radio classic. Plays now.
0: So, जी क्लासिक सॉन्ग जो होते हैं उनका म्यूजिक ऐसे ही शुरू होता है और ऐसे ही आपको लेकर चलता है किसी दूसरी दुनिया में। कश्मीर की कली फिल्म का नाम है।

0: बादल कैसे दीवाना होता है? सोचिए बादल कैसे दीवाना होता है, घूमता फिरता रहता है, गर्दिश में रहता है क्या?
1: खबर पर नजर विथ रुबीना खान।
0: सर जी, खबर पर नजर पर आज जो एक इंटरेस्टिंग न्यूज है, दिलचस्प खबर है, वो एलिफेंट या हाथी के बारे में। मेरे ख्याल कोई ऐसा होगा जिसको ये मालूम ना होगा कि एलिफेंट को हाथी कहते हैं। चलिए, दोनों लफ्ज मैंने इस्तेमाल कर लिए। तो आपसे पूछना यह है कि कभी आप क्या सोच सकते थे इस खबर को सुनने से पहले कि हाथी भी बोलते होंगे, या अपने अपने जो उनके बहन भाई होते हैं या माँ बाप होते हैं उनको उनके नाम से पुकारते होंगे। अगर ऐसा है तो ये सोच आती है ना कि उनके नाम कौन रखता होगा। इतनी दूर नहीं जाते हम कि उनके नाम, एक दूसरे के नाम कैसे रखे जाते हैं। लेकिन बरतानवी यूके के अखबार के मुताबिक डॉल्फिन और तोतों को भी अपनी नस्ल के दूसरे जानवरों की आवाजें नकल करते तो सुना है। और अब हम जानते हैं कि डॉल्फिन जो है वो भी एक दूसरे की, मतलब काफी ज्यादा वो इंसानों की तरह बिहेव करती हैं। लेकिन रिसर्चर्स का कहना यह है कि अब जो हाथी हैं, एलिफेंट, ये पहले गैर इंसानी जानवर है जिनके बारे में मालूम हुआ है कि वो आवाज की नकल किए बगैर एक दूसरे के लिए मखसूस नाम इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर यह भूल जाइएगा कौन उनके नाम रखता है, क्योंकि हमें यह नहीं मालूम। लेकिन तहकीक के जो मरकजी मुसन्निफ है माइकल, उन्होंने कहा है कि ये तहकीक जाहिर करती है कि हाथी हर फर्द के लिए मखसूस आवाजें इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये भी कि अगर वो अपने लिए की जाने वाली पुकार को पहचानते हैं, यानी उनको खास तौर पर पुकारा जाए तो उनको पता होता है कि ये पैगाम या ये गुफ्तगू मुझसे हो रही है और इस पर रद्द अमल देते हैं। कहते होंगे, अच्छा मैं चाय लाया, मैं पानी लाया शायद इस तरह की बातें जैसे हम लोग करते हैं। लेकिन बहरहाल वो गुफ्तगू करते हैं और वो डायलॉग करते हैं। अब बात ये है कि हाथी के बारे में ये भी कहा गया, ये तो हो गया फैसला कि वो बोलते हैं और उन्होंने कहा जी बातचीत करते हैं, उनका नाम पहचानते हैं अपने, और कोई बात उनसे पूछी जाए तो उसका जवाब देते हैं। लेकिन हाथी को ये स्किल हासिल करने में काफी टाइम लगता है, इसलिए जो बच्चा हाथी होता है ना, बेबी एलिफेंट, वो इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करता या नाम नहीं लेता। तो काफी जो मैच्योर हाथी होते हैं वो ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं चीजों को, अदरवाइज नहीं। आज के लिए इतनी ही, क्योंकि आज की जो मेन खबर है वो तो हम ऑलरेडी प्रोग्राम के शुरू से ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की आज बर्थडे है, और यौम पैदाइश जिसको हम कहें उसको हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, और हर कोई दिल से कर रहा है, पूरी दुनिया में किया जा रहा है।
1: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.

0: known as Asian Sound Radio. Leica Extra Podcast Update.
1: तो जी लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट अब तक पहुंचा दें. लाइक अ मैन अनफिल्टर्ड. अब ये जो पॉडकास्ट है अनफिल्टर्ड है, इसमें बातचीत डायलॉग जो है वो जैसा हुआ है वैसा ही आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं. एंड दिस पॉडकास्ट इज होस्टेड बाय सैंडी शाह फीचरिंग राज बदन, टी प्राजा और री प्राजा, यस, एंड वैश भटनागर. और इसमें बात जो की गई है प्रेजेंटर्स के बारे में, क्या बहुत इंटरेस्टिंग है. खुद इंसान क्या कहे कि प्रेजेंटर्स जो हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं. मेल प्रेजेंटर्स ज़्यादा मशहूर होते हैं या फीमेल होती हैं. यहाँ पर चूंकि मेन बैठे हैं, उन्होंने कहा जी मैं फीमेल के लिए ज़्यादा वो लोग इम्पैक्ट करते हैं ऑडियंस पर. लेकिन बहरहाल ऐसी एक पॉडकास्ट हम फीमेल को भी करनी पड़ेगी और हमें भी बताना पड़ेगा. लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजोन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर.
0: लाइक एक्स्ट्रा इज द मैगजीन शो विद रुबीना खान. लाइक अ
2: रेडियो shine skyscrapers and souks
3: for less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
2: Flying direct with Emirates, so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break, or a shopping trip, Dubai has never been better value.
3: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
2: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
3: Southall Travel. At all protected.
4: Something new has just landed at Cake Box. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized cake box straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only. Wherever they are, be part of their celebration. Cake Box Celebrations, now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: Did you know Hawa Hawai, Nimbuda and Dola Re Dola all feature the unforgettable voice of Kavita Krishnamurti? Three classics, one extraordinary singer.
2: Kavita Krishnamurti, celebrating Diwali, 1st November at Royal Albert Hall, London. Tickets at Box Office. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: सच ही हर चीज को जानना जरूरी नहीं होता। इसका टैगलाइन ये है,
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया मनी सेंड करने के लिए आज आपको एक्सचेंज रेट मिलेगा 127.99 एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI यूनो मोबाइल ऐप टीज एंड सीज अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with Robina Khan. Like a
2: radio. Is an opportunity. So now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
3: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
2: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
3: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs.
2: With the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
3: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
2: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
4: Sunshine, skyscrapers and souks.
5: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
4: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
5: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
4: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
5: Southall Travel. At all protected.
6: बात क्या है बंटू?
7: अरे बोलो काक भसुंडी।
8: मेरठ की क्योटिक फैमिली में आई पिक्चर परफेक्ट दुल्हन।
6: मिनी क्या हुआ? क्या हुआ? तो
8: और लाइफ बन गई हेवन।
9: भाभी डायन है।
8: बट वेट, ये भाभी है या डायन इन डिस्गाइज?
10: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
5: नई नवेली स्टारिंग यामी गौतम धार, प्रोड्यूस्ड बाय आनंद एल राय। नई नवेली इन सिनेमाज अक्टूबर 16।
10: आप सिर्फ मजे लो।
11: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
12: फैंसी विनिंग समथिंग टेस्टी ऑन द साइड?
13: Order at Pepe's through the app and you could win tech vouchers instantly. And there's more.
12: Every order enters our monthly prize draw to win a gaming bundle, a brand new console, wireless headset, gaming chair, smart speaker and mini fridge.
13: So order your Pepe's flame grilled, piri piri, Pepe-licious flavor and you could win big.
12: Pepe's. Win big. T&Cs apply.
1: Leica Radio Network. The Magazine Show with Robina Khan.
0: आज तो हुक बनानी है आवाज की, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की आवाज। पंजाबी कलाम हो, उर्दू गजल हो, उर्दू कव्वाली हो, फिल्म के लिए प्लेबैक

0: और द मैगजीन शो। एक घंटे का हमारा और आपका साथ अभी बाकी है। 3:30 पे शॉर्ट हॉट टचिंग स्टोरी, दिल को छू लेने वाली कहानी आज भी।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, Greater Manchester, a new Asian sound for the northwest of England. 9:63 AM and 13:77 AM. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Leica. Robina Khan. Now every Monday to Thursday at 1 PM on Leica Radio, Greater Manchester.

0: म्यूजिक है और क्या गीत है, जब हैरी मेट सेजल 2017 की फिल्म अरिजीत सिंह के साथ करलिसा मॉन्टेरियो। ये भी बहुत प्यारा नाम है, अनयूजुअल।
1: Mica Radio Network, broadcasting across Greater Manchester.
0: सो जी, प्रोग्राम के थर्ड एंड फाइनल आवर में आप दो गीत तो सुन ही चुके हैं, और पहला गीत भी बता दें, सजना वे सजना सुनिधि चौहान की आवाज में था और फिल्म का नाम था चमेली। इस गीत के साथ ही जो मैसेज मिला था वो रुखसाना आपका था, और आपको ये गीत पसंद है, आपके नाम करती हूँ लवली म्यूजिक सजना वे सजना। और जो इतना एनर्जेटिक गीत होता है वो किसकी आवाज में होना चाहिए, आप अच्छी तरह सब लोग जानते हैं। देखिये कैसे डिविजन हो जाती है, यानी सुनिधि चौहान ऐसा लगता है इसके अलावा कोई और नहीं गा सकता। लता मंगेशकर का कोई गीत गाया हुआ हो तो हम कहेंगे ये तो लता जी ही की आवाज में सूट करना था। इसी तरह सो अनवर, मोहम्मद रफी हैं, किशोर कुमार हैं, तो यूं ही फील होता है हम लोगों को, इतनी मतलब परफेक्ट सिलेक्शन होती है। लेकिन आपने रुखसाना एक बहुत प्यारी सी कप ऑफ टी, अच्छा भाई बात यह है कि अल्लाह भला कहे इस टाइम, क्योंकि मैं बिल्कुल अपनी कप ऑफ टी को भूली हुई थी, कोई चाय शाय नहीं पी, और मैंने ये हवाएं तो कहीं आपको लेके जा रही थी लेकिन मुझे चाय की प्याली की तरफ लेके जा रही थी, और मैंने चाय की एक जबरदस्त कप ऑफ टी अभी अभी पी है, क्योंकि तस्वीर देख के, वरना बाज़ूकत किसी चीज का ख्याल भी नहीं आता, मसरूफियत होती है या आई डोंट नो क्या होता है, लेकिन नहीं ख्याल था। और इसके साथ ही चाय की प्याली के ऊपर एक शेर है कि नए जमाने के हसीन लोग अब भी ये हसीन किसको कहा है आपने, नए जमाने के हसीन लोग अब भी चाय और गजलों के शौकीन हैं। अच्छा ये शेर नहीं है लेकिन इसको इसी तरह से पढ़ा जा सकता है, लेकिन ठीक है, चाय और गजलों के शौकीन जो लोग होते हैं वो बहुत हसीन होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मैं तो इस पे एग्री करती हूँ आपके साथ। तारिक एवान, आपका मैसेज है और आपने कहा कि थैंक यू बोला है बहुत से गीतों पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पिछले दिनों काफी सॉन्ग रिक्वेस्ट किए लेकिन मैं उनको प्ले नहीं कर पाई, उसके लिए मैं माजरा चाहती हूँ। और बात सिर्फ यही रही होगी कि वो गीत मिला नहीं होगा या वो प्लेलिस्ट में कहीं बासकत कोई चीज एडजस्ट नहीं करती, आई डोंट नो, लेकिन कुछ होता है कि मैं उसको जब प्ले करके देखती हूँ लगे कि नहीं इस वक्त के लिए ये राइट नहीं है तो फिर प्ले नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके जो सॉन्ग्स हैं उनको प्ले करना नहीं चाहते, ये कभी नहीं हो सकता। सुफियान, आपका मैसेज है, आप भी गीतों को एंजॉय कर रहे हैं और प्रोग्राम में शामिल हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मोहम्मद अयूब चौहान साहब, आपने मैसेज किया और आपने लिखा है कि वाजी वाह रुबीना जी क्या सॉन्ग प्ले कर दिया है। अब मैं देख रही हूँ, देखिए मुझे कितनी एहतियात से देखना पड़ता है, ये आपने कहा लिखा है 2:48 पर, तो मैं अज्यूम करी हूँ कि आपको बीबा साडा दिल मोड़ दे वाली कव्वाली पसंद आई होगी। और वो चाहत हाशमी, आप अलेक्सा पे सुनते हैं, ऑर्डर करते हैं और वो आपके लिए लाइक रेडियो प्ले कर देता है या कर देती है, ये जेंडर बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं जी ओपन द विंडो, वो कहते हैं जी ओपन द विंडो, देखे इंग्लिश में ये मसले नहीं है, खिड़की खोल दो, और हम जब उर्दू में तजुबा करेंगे खिड़की खुली है और या फिर ये कि आई मीन के इसी तरह हर चीज में होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सो बहरहाल वजाहत हाशमी, आप सुन रहे हैं, आप भी कुछ झूम झूम जा रहे हैं, एंड यूसुफ आपने मैसेज भी किया है और आपने कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है, वो मैं प्ले नहीं कर सकती हूँ, मेरा ख्याल है वो मैंने ढूंढा है लेकिन मुझे मिला नहीं है, बहरहाल मेरी तलाश जारी रहेगी और नहीं तो इंशाल्लाह आपका रिक्वेस्टेड सॉन्ग नोट कर लिया है, कभी ना कभी प्ले होगा। जमशेद चौधरी, आपने हैप्पी फेस लिखकर आई मीन के इमोजी भेजी है, आपको वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, और आपने क्या लिखा है जी, आपने ये लिखा कि सारी कवालियां उनकी अच्छी हैं और कौन सी कवाली को हम कहें, अच्छा है जी, ना ही रिक्वेस्ट करूँ तो वैसे चंगा है, वरना फिर आपको ये भी हो सकता है कि जी हमारी जो फरमाइश है पूरी नहीं, तो शिकवा भी हो सकता है, लिहाजा इससे जान छुड़ाने का एक ही तरीका है कि रिक्वेस्ट हो ही ना, सिरे से ही ना हो, लेकिन बहरहाल कोशिश रहती है, आप सबको पता है अच्छी तरीके से इस चीज का। एन खान, आपका मैसेज है और आपने लिखा अच्छा म्यूजिक लवली पोइट्री और जियो जी ठीक है, जीते हैं कोशिश करते हैं। गुड आफ्टरनून का मैसेज भेजा है नसीर अहमद भट्टी आपने, और हाँ आपने शिकवा किया कि आप हमारे सॉन्ग्स प्ले नहीं करती, मेरा ख्याल है और मुझे अच्छी तरह से याद है कि कल आपने एक गीत रिक्वेस्ट किया था और मैंने उसको प्ले किया था, तो आप ये आप अपनी स्टेटमेंट को वापस ले लें क्योंकि ऐसा नहीं हुआ एंड देन लैंकाशायर से आप एसपी सजाद हैं. फरजाना आपका पहला मैसेज था, जल्द जल्दी आपने मैसेज किया और आपने चाय भेजी थी शुरू शुरू में ही, कप ऑफ कॉफी वो मैं अभी देख रही हूँ, बड़ी सजी बनी, बड़ी बड़ा कुछ इस कॉफी के इर्द गिर्द बना हुआ है, फूल बने हुए हैं, सितारे बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि बिग सेलिब्रेशन है. चलिए ये थे आपके मैसेजेस जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने इतने ध्यान से प्ले किए हैं, पेश किए हैं. और अगर कहीं कोई मैसेज रह गया तो अभी हम देख लेते हैं, अभी काफी टाइम है.
1: The Magazine Show with Robina Khan. Like a radio.
2: Why is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
3: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
4: Dubai is the place. 11,
3: 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
5: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
6: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
3: London, get ready for an unforgettable night.
7: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
3: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
7: Kana.
2: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
3: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
2: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
3: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
8: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
9: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
8: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
10: Discover the magic of India with Tickets to India. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India. Bringing India closer.
11: इंग्लैंड में हम पानी को उससे ज्यादा तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं जितनी तेजी से कुदरत उसे पूरा कर सकती है. अगर कुछ तब्दीली ना हुई तो 2055 तक हम रोजाना 5 बिलियन लीटर से ज्यादा पानी की कमी का सामना कर सकते हैं. और वेल्स में ज्यादा बरसात वाली सर्दियां और ज्यादा खुश्क गर्मियां पानी के जखीरे पर दबाव डाल रही हैं. हम में से अक्सर लोग समझते हैं कि हम रोजाना तकरीबन 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत इससे काफी ज्यादा, लगभग 140 लीटर के करीब है. हम सब कुछ आसान तब्दीलियां करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं. छोटी शावर लें, लीक होने वाले नल या टॉयलेट को ठीक करवाएं, बर्तन धोने के लिए नल खुला रखने की बजाय एक बाउल का इस्तेमाल करें, डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड का इस्तेमाल करें. पानी कीमती है, इसे महफूज रखने के लिए हमें कम इस्तेमाल करना होगा. लेट्स सेव वाटर को सर्च करें या letssavewater.com पर जाकर रोजाना पानी बचाने के आसान तरीके जान लें.
1: 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0161 250 8222 or sales at leicamedia.co.uk.
12: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

0: आज ब्यूटीफुल ट्रैक पन्ना की तमन्ना है और लता मंगेशकर और किशोर कुमार पन्ना और हीरा और पन्ना 1973 की फिल्म से गीत अभी आपको सुनवाया पेश किया।
1: Short, heart touching stories with Rabina Khan.
0: So, आज की स्टोरी एक चाइनीज मिथ से ली गई है और इसमें चाइनीज विजडम आपको नजर आएगी। सो पुराने जमाने की बात है, चीन में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसे फूलों और बागबानी से यानी गार्डनिंग से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन वो अपने बाद अपने तख्त पर किसी ऐसे शख्स को बादशाहत सौंपना चाहता था जो इंटेलिजेंट हो, ज़हीन हो, लेकिन ईमानदार भी हो। इसने पूरे मुल्क में ये ऐलान किया और कि जो भी कैंडिडेट बनना चाहते हैं और उम्मीदवार बनना चाहते हैं बादशाहत के, तो वो महल में आए। बहुत से लोग आए, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए। अब उसने ये किया कि हर शख्स को उसने फूलों के कुछ बीज दे दिए। ये आपको अभी मैंने बताया कि उसको बड़ा इंटरेस्ट था कि वो गार्डनिंग करता था फूलों से और पौधों से, उसको मोहब्बत थी, लेकिन बादशाहत के लिए ईमानदारी भी उसके ख्याल में बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी। सो बादशाह ने उन लोगों को जो महल में आए उनको कुछ फूलों के बीज दिए और कहा कि जो सबसे खूबसूरत फूल उगाएगा वो मेरे जानशीन के इंतखाब में सबसे आगे होगा। इन्हीं लोगों में एक शख्स का नाम पिंग था, पिंग लड़का। उसे पौधों से बहुत मोहब्बत थी। उसने बीज एक गमले में बोए, मिट्टी को पानी दिया, धूप का ख्याल रखा और हर रोज उम्मीद से देखता कि शायद कोई नन्ना सा छोटा सा पौधा निकल आए। हम लोग भी ऐसे करते हैं ना, जब पौधा लगाते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि जल्दी से उगाए और हम देखना चाहते हैं कि ये कितना मतलब मिट्टी से बाहर आया। मगर कई दिन गुजर गए, कुछ भी नहीं उगा। पिंग ने मट्टी बदली, नया गमला लाया, लेकिन नतीजा वही रहा। इधर उस वक्त, उस तारीख का वक्त आ रहा था जबकि तमाम लोगों ने अपने अपने गमले लेकर महल में जाना था। तो ये दूसरी तरफ बहुत से लोग थे, बहुत से लोगों के गमलों में बड़े खूबसूरत रंग बिरंगे फूल थे और किसी के पत्ते थे, यानी कुछ ना कुछ जरूर था। अब पिंग जो है बड़ा परेशान था। उसने कहा, मैंने पूरी मेहनत की, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ? अब बादशाह तो मुझे नाकाम समझेगा। महल में जाने का दिन करीब आया तो उसके फादर ने उनको कहा कि बेटा, तुमने अपनी पूरी कोशिश की है, अब जो हकीकत है इसी के साथ बादशाह के सामने जाना। पिंग ने अपना खाली गमला उठाया, महल की तरफ चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। हर तरफ लोग खड़े थे और उनके हाथों में खूबसूरत फूलों से भरे हुए गमले थे। क्या मंजर होगा वैसे, जहां पर फूल ही फूल होंगे। तो कुछ बच्चे और कुछ लोग एक दूसरे के फूलों की तारीफ कर रहे थे, जबकि लोग पिंग के खाली गमले को देखकर हंस रहे थे। तो कुछ लोगों ने कहा, तुम तो कुछ भी नहीं उगा सके। तो उसने नजरें झुका ली, वो क्या करता। फिर बादशाह महल से बाहर आया, हर गमले को उसने गौर से देखा। इसने किसी के फूलों की तारीफ की, किसी के पौधे को देखा, मगर उसके चेहरे पर इत्मीनान नजर नहीं आया। आखिरकार उसकी नजर पिंग पर पड़ी और पूछा, तुम्हारे गमले में कुछ नहीं उगा, क्यों? बादशाह ने पूछा तो पिंग ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने पूरी कोशिश की, मैंने बीज बोए, पानी दिया, देखभाल की, लेकिन कुछ नहीं उगा। अब मेरे पास आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये सच है कि मैं कुछ नहीं उगा सका। बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अब जो है ना क्लाइमैक्स स्टोरी का सुनिएगा, और ये एक्सपेक्ट मैंने भी नहीं किया था, आप भी नहीं इस वक्त सोच रहे होंगे। तो इसने तमाम बच्चों को और लोगों को जो भी फूल उगा कर लाए थे करीब बुलाया और कहा कि मैंने तुम्हें और तुम सबको जो बीज दिए थे, जो सीड्स दिए थे, वो बॉइल्ड थे, वो ऐसे सूरत में थे कि इनसे कोई पौधा उग ही नहीं सकता था। तुम सबने दूसरों को मुतासिर करने के लिए दूसरे बीज बो दिए, तुमने बेईमानी की। लेकिन पिंग ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठ नहीं बोला, बल्कि वो बीज तो थे ही नहीं कि उनसे फूल उग जाते। तो फिर बादशाह ने ऐलान किया कि पिंग ही वो शख्स है जो अच्छे हुक्मरान की बुनियादी खूबियां उसके अंदर मौजूद है, सच बोलने की हिम्मत है। पिंग ने अपने खाली गमले को देखा, چند لمحے پہلے ہی یہ گملہ اسے اپنی ناکامی اور ذلت محسوس ہو رہا تھا، مگر اب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اصل کامیابی پھول اگانے میں نہیں بلکہ سچائی پر قائم رہنا تھا. اور کہانی کا سبق یہی ہے، اور آپ خود سمجھتے ہیں اچھی طریقے سے، کبھی کبھار وہ چیز جسے ہم اپنی سب سے بڑی ناکامی سمجھتے ہیں ہمارے کردار کی سب سے بڑی کامیابی بن جاتی ہے. دنیا اکثر ہم سے خوبصورت نتائج مانگتی ہے، وہ پھول مانگتی ہے، خوشبو مانگتی ہے، دولت مانگتی ہے، لیکن امتحان اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے نقصان کا خوف نہ رکھیں اور سچ بولیں. کامیابی یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو کیا دکھاتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم حقیقت کا سامنا کس طرح کرتے ہیں.
1: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.

0: नहीं दफ्तर की आवाज आप सुन रहे हैं, आती है पवन, फूलों के लिए, पौधों के लिए और हमारी अपनी जिंदगी के लिए। जरूरी है ना हवा पानी। लेकिन ये बड़ी हैरत की बात है कि इंशा जी का लिखा हुआ कलाम है ये। इंशा जी चल उठो अब कुछ करो वाले।
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: तो जी आज गोल्ड रेट आपको बता दें, 24 कैरेट गोल्ड और 1 ग्राम गोल्ड का रेट है 101 pound 55 pence.
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
0: Leica Radio. आज हाँ ये है और ये है लाइका रेडियो। कुछ न्यूज़ और रिमाइंडर्स जो आपको बताना चाहते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया के हवाले से। क्रेजी फॉर किशोर, सो क्रेजी फॉर किशोर दिवाली स्पेशल है फीचरिंग द मोस्ट मेलोडियस ट्रैक्स ऑफ किशोर कुमार, अ ट्रिब्यूट नाइट विद F515 लाइव बैंड ऑन फ्राइडे 6 नवम्बर। सो द प्रिंस रीजेंट होटल में ये होगा इवेंट, और टिकट्स एट eventbrite.co.uk, और एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो नेटवर्क। और इसके साथ ही उदित नारायण एंड आदित्य नारायण लाइव परफॉर्म करेंगे। 90s बॉलीवुड लेजेंड उदित नारायण अपने बेटे आदित्य नारायण के साथ परफॉर्म करेंगे एट ओवीओ अरीना विमले ऑन संडे 20th December। टिकट्स आपको मिल सकते हैं टिकट मास्टर से एंड AXS से। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो नेटवर्क, और रगसान लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कंफर्म्ड अ पार्टनरशिप विद अ प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रगसान। डिटेल्स एट leicaradio.com.
1: The Magazine Show with Robina Khan. Leica
2: Radio. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: Sunshine, skyscrapers and souks
4: for less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
3: Flying direct with Emirates so you can enjoy 3 nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
4: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
3: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
4: Southall Travel. At all protected.
5: We're finally going home for the wedding.
6: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
5: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
6: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
5: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
6: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
5: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
7: Save an extra 10% with code ROAMFREE10. Simzy. Powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
8: New at Pepe's.
9: Pepe's Melts.
8: Flame grilled flavor, toasted to order. Choose chicken melt with flame grilled chicken, melted cheese and flavor packed toppings in toasted focaccia.
9: Or go for paneer melt with the same Pepe-licious flavor. Choose smoky barbecue cheese or fresh tomato salsa cheese.
8: Chicken or paneer, barbecue or salsa. Your melt, your way.
9: New melts, only at Pepe's.
10: Darling, it's my last season of Coffee with Karan. Why would I do anything controversial? Just trust me. Yeah? Okay. Yeah. Love you too.
11: Coffee with Karan Season 9. Watch it from 14th October. Only on Jio Hotstar.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner. Ragasan.
12: मैं हूँ इब्ने ताबिश और मेरा आपका साथ रहता है रोजाना मिड मॉर्निंग शो में लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर से सुबह 10 बजे से 1 बजे दोपहर तक।
1: Leica Radio Network, broadcasting across Greater Manchester.

0: ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Mamster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: Diwali is approaching and is your business ready? Sadia Wholesale has your Diwali essentials covered, so stock up and get ready to celebrate. Get in touch today, info@sadia.co.uk or give us a call on 0203 048 4848. On behalf of Sadia Wholesale, happy Diwali.
3: आज नवरात्रि का तीसरा दिन है. इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है. माँ का ये स्वरूप साहस और शांति का प्रतीक है. मान्यता है कि उनकी आराधना से भय दूर होता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है. माँ की घंटी का नाद सुनाएं, मन के सारे डर मिट जाएं. माँ चंद्रघंटा की कृपा हो ऐसी, हर घर में सुख शांति छा जाए. लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. जय माता दी.
4: Navratri special on Laika brought to you by Tilda. Tilda Basmati. Share the flavor, share the joy. Loved by generations since 1970.
5: Drive Time with Riz Khan. Sponsored by Pepe's Piri Piri.

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां ली भंग होगी।

0: मास्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Discover the magic of India with Tickets to India. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer. आज नवरात्रि का तीसरा दिन है. इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है. माँ का ये स्वरूप साहस और शांति का प्रतीक है. मान्यता है कि उनकी आराधना से भय दूर होता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है. माँ की घंटी का नाद सुनाएं, मन के सारे डर मिट जाएं. माँ चंद्रघंटा की कृपा हो ऐसी, हर घर में सुख शांति छा जाए. लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. जय माता दी.
3: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका brought to you by Star Tours. Switzerland जाना है तो Star Tours के साथ ही जाना है. Star Tours, travel once and you'll travel again and again.
4: Drive Time with Riz Khan, sponsored by Pepe's Piri Piri.

0: At the Gorga Pianda Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Discover the magic of India with Tickets to India. Whether you're planning your next adventure or a trip back home, you've got unbeatable deals waiting for you. Book online at ticketstoindia.co.uk or call 0208 518 9100. Tickets to India, bringing India closer.
3: Darling, it's my last season of Coffee with Karan. Why would I do anything controversial? Just trust me. Yeah?
4: Okay. Yeah. Love you too.
5: Coffee with Karan Season 9. Watch it from 14th October. Only on Jio Hotstar.
6: Leica Radio Network. Proud hospitality partner. Ragasan.
7: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0161-250-8222 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
8: मैं हूँ नीसा नासिर, लाइका गोल्ड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में। मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में जारी रहती है। बिग शो सुनना भूलिएगा मत।

0: कोई माने या ना माने, अनजाने तो वो कल भी नहीं थे और जान से प्यारे वो कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट माई गेस्ट हू आई एम गोना इंट्रोड्यूस टू यू वेरी सून, लेकिन इससे पहले आप सबका स्वागत, खैर मकदम जी आया नू। और ये भी बता दूं कि भी आज ये जो इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, निशा जी आज थीम ये है, आज थीम ये है, ज्यादा चलाक बनने की कोशिश ना करें। आपको पता है कि आज थीम जो है वो किशोरदा है और दो घंटे मैं जो है उनको ट्रिब्यूट करूंगी, उसके बाद इन द फाइनल आवर वन एंड ओनली जनाब उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब। वो अदाए दिलबरी हो कि नवाए आशिकाना, जो दिलों को फतेह कर ले वही फातेह जमाना। एंड वी आर लकी कि हमारे पास ऐसे प्यारे प्यारे फनकार थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। लीजिए टाइम जाया नहीं करते, आगे बढ़ते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today can get you up to 125.7 Indian rupees. So yaad rahe, exchange kar sakte hain aap branch mein online ya phir SBI Yono mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit SBIUK.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Hanisa Nasir, live across Greater Manchester with The Big Show. Like a radio. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: Sunshine, skyscrapers and souks
3: for less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
2: Flying direct with Emirates, so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
3: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
2: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
3: Southall Travel. At all protected.
4: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.
5: Something new has just landed at Cake Box. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized cake box straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only, wherever they are. Be part of their celebration. Cake Box Celebrations, now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.
6: New at Pepe's.
7: Pepe's Melts.
6: Flame grilled flavor, toasted to order. Choose chicken melt with flame grilled chicken, melted cheese and flavor packed toppings in toasted focaccia.
7: Or go for paneer melt with the same Pepe-licious flavor. Choose smoky barbecue cheese or fresh tomato salsa cheese.
6: Chicken or paneer, barbecue or salsa. Your melt, your way.
7: New melts, only at Pepe's.
8: In England, we're using water faster than nature can replace. If nothing changes, by 2055, we could face a daily water shortfall of more than 5 billion litres. And in Wales, wetter winters and drier summers are putting pressure on the water supply. Most of us think we use around 30 litres a day, but the reality is closer to 140 litres. We can all help to save water by making simple changes. Take shorter showers. Fix leaking taps or toilets using a washing up bowl instead of running tap, and switch to eco mode on your dishwasher or washing machine. Water is precious. To protect it, we all need to use less. Search Let's Save Water or visit letssavewater.com for easy ways to save water every day.
9: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
1: Did you know you can get all the biggest showbiz news stories daily by logging on to LaikaRadio.com or the Laika Radio mobile app, powered by BizAsiaLive.com.
10: This is Laika Radio.
1: This is Laika Radio.
0: लीजिए दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं. इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और वो जिनका जिक्र सैंडी जी भी कर गए थे कि मेरे प्रोग्राम में आज वो इज्जत बख्शेंगे मुझे, और उनका नाम है वन एंड ओनली लखविंदर वडाली जी. हम आपको बहुत दिनों से बता रहे हैं कि ही इज हियर फॉर टू कॉन्सर्ट्स, वेरी स्पेशल कॉन्सर्ट्स हैं, इनको मिस नहीं करने का. उसके बारे में डिटेल्स में आपको आगे चल के बताऊंगी, लेकिन पहले दिल की गहराइयों से स्वागत खैर मकदम जी आयान वडाली जी थोड़ा.
11: जी आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लाइका रेडियो सुन रहे सारे श्रोतिया नु, ते थानू बहुत बहुत प्यार सत्कार.
0: थैंक यू सो वेरी मच.
11: बड़ी खुशी वाली गल है कि तुसी इन्ने सोहने शब्द मेरे लिए बोले, सो थैंक यू वेरी मच.
0: मैं पते कई लोग होंगे जिन्ना वासे तुसी ना लफ्ज भी जड़े ना वो परेशान होंगे के केड़े जड़े चेहरे मुंह ते आई है कि जड़ा उन्ना दी उन्होंने नाल इंसाफ हो सके, उन्होंने परिचय जड़ा, उन्होंने इंट्रोडक्शन जड़ा है वो जस्टिफाई कर सके. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू आर वन ऑफ दोज पीपल, आई मीन इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. देखो सुनने वाले नु मैं बहुत ज्यादा थोड़ी हिस्ट्री दसन बैठांगी, तो टाइम जड़ा एवरीबडी नोज यू वडाली फैमिली नु कौन नहीं
11: जानता.
0: बिल्कुल कहना बिल्कुल सही जी. थोड़ी मतलब अपब्रिंगिंग जड़ी हुई है चारों चफेरे, मतलब थोड़े ट्रेन करन वास्ते, थानू सुनन वास्ते, थानू जानन वास्ते एडा कुछ सीगा, ते तुसी मतलब अपने शौक नाल सिखिया या सोचिया कि भाई वड्डे यही कर रहे हैं ते मैनु भी यही करना चाहिए.
11: वैसे मैं सच दसा ते मेरा मेनू इस लाइन च आउण दा शौक नहीं सी.
0: राइट
11: जी, मेनू शौक ते सीगा मैं प्लेयर बनन दा, क्रिकेट खेलंदा.
0: राइट,
11: ते काफी अच्छा प्लेयर भी सी मैं, मतलब अपने स्कूल लेवल कॉलेज लेवल ते बहुत अच्छा खेल भी रहा सी मैं. ते किसी ने जाके पापा जी नू चाचा जी नू शिकायत करती के थोड़ा जेड़ा बेटा है वो ते थोड़ी लाइन छड़ चलिया, ते एक ही हैगा के जेड़ा थोड़ी विरासत नू
0: लेगेसी नू अगे लेके चलेगा. जी जी जी,
11: ते उन्होंने फिर पापा जी नाल गल की, चाचा जी ने, के साडा मुंडा ते साडे हथों निकल चलिया होर लाइन च चला चलिया.
0: अजकल तो हिसाब है, खेडोगे ते कूदोगे ते बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे ते होवोगे खराब, ए ओ हिसाब हो गया
11: बिल्कुल. और जदों मैं घर वापस आया ते पापा जी सामने बैठे हुए सी, ते मैनू देख के मैनू कहंदे इहदे विच की रख्या होया आ जिहड़ी तू चक्की हुई है बोरी जी. मैं कहा जी इहदे विच बैट हैगे आ ते खेडण वास्ते पैड्स ने ते बैट आ, ते ओह कहंदे फड़ा मैनू. उन्होंने चक के हुण उस टाइम ते खुले घर हुंदे सीगे पिंडां दे विच, उन्होंने चक के सारा ओह मेरी किट जिहड़ी सी ओह तंदूर दे विच पाती, बलदे होए तंदूर च पाती.
0: दिल के अरमासों में बह गए.
11: बस ओह फिर तुसीं हुण समझ सकदे हो कि मेरे दिल ते की बीती
0: बीती होएगी.
11: ते मैनू कहंदे चल इधर आ हुण छड्ड दे क्रिकेट ते तू हुण ला क्रिकेट. जज्बात की ने मेरे प्रति, फिर मैं बस इधर लग गया. फिर उस तो बाद फिर मेरे राइट भी म्यूजिक सी, लेफ्ट भी म्यूजिक सी, क्योंकि राइट पापा जी बैठे होंगे सी ते लेफ्ट ते चाचा जी ते सेंटर च मैं, ते बस फिर उन्हां दा ध्यान मेरे वल ही हुंदा सी जदों मैं उन्हां दे नाल छोटे हुंदे उन्हां नूं
0: जनरेशन है
11: जी.
0: पहली कवाली या सूफीजम दे नाम तो ना लोकी थोड़ा जिहा मतलब सोचदे सी कि सिर्फ जिहड़ा रिलीजियस ही है
11: जी, जी,
0: बाकी अधीन, हालांकि सूफीजम इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग. ठीक है, सो हुण तुहानू नहीं लगदा कि जिहड़े बच्चे है ओह भी इस पासे आ रहे है?
11: बहुत ज्यादा सुन रहे जी,
0: बहुत ज्यादा सुन रहे
11: समय तो जी, बहुत ज्यादा सुन रहे हैं.
0: एंड थैंक्स टू यू गाइज, बिकॉज तुसी ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਪੀਕਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਾਲੀ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ
11: ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਡੰਮੀ ਗਾਇਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਂਝ ਹੀ ਗਾ ਕੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਮੈਂ ਲਾਜਪਾਲ ਹਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਟਿਪੀਕਲ ਕੁਆਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਈਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਿਦਮਿਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ
0: ਬਹੁਤ ਹੀ
11: ਜਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਚਰਖਾ ਵੀ ਮਾਈਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ
0: ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ
11: ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਖਤਾਰ ਸਹੋਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਨੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਬਲਾ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਲੈਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾੜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਤਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸੋ ਪਾਪਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਕੁਨਾਲ ਕਪੂਰ ਦੀ ਮੂਵੀ ਸੀ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਪਰ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਜਲਦੀ
0: ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਨਸਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਵਾਲੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਚਲੋ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਰੀਨ ਜੀ ਆਪਕਾ ਤੋ ਨਾ ਹਮਨੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਹੈਲੋ ਨਾ ਹਾਈ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਮ ਦੋਨੋ ਖੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਭੀ ਨਾ ਗਲਾਸਿਸ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤੀ ਹੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਆਜ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਕੋ ਸੁਣਤੇ ਤੋ ਰਹਤੇ ਹੈ ਆਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ
12: ਆਜ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹਮ ਯਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਕਾ ਗੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੀ ਕਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਨਤਾ ਸਵਾਏ ਇਨਕੇ
0: ਨਹੀਂ ਸਮਰੀਨ ਆਪਕੋ ਸਭ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਲਾਈਕਾ ਕਾ ਯੇ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਨਾ ਯੇ ਆਪਕਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਮ ਹੈ everybody knows aapka koi concert ho koi event ho to aap to ghar ka ek banda ho isliye maine bada easy feel kiya and to be very honest I'm very excited lakhvinder ji ko dekh ke ek hota hai suchcha aur uchcha artist jo hota hai na uski apni khich hoti hai uski tarah se vibes bade acche aate hain to wo main khud ko johri to nahi keh rahi lekin pata hota hai jo music mein itna khubba hota hai na usko ek wo hoti hai
12: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਸਹੀ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਂ ਇਨਕੋ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਸੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੂੰ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਸਿੰਗਰ ਔਰ ਉਹ ਕਹਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੋ ਇੱਕ ਆਨਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ
0: ਹਮ ਸਭ ਕੇ ਲਈ
12: ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਟੀਮ ਇਵੈਂਟਸ ਐਂਡ ਪੀਸ ਨੇਸ਼ਨ ਯੂ ਕੇ ਹਮ ਮਿਲ ਕੇ ਯੇ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋ ਯੇ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋ ਹਮ ਯੂ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੋ ਹਮ ਸਭ ਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਸ਼ੋ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਸ਼ੋ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬਾਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਟਿਕਟਸ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਇਵੈਂਟ ਬ੍ਰਾਈਟ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਕ ਕਰੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਯੇ ਮੈਂਬਰੇਬਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੇ ਯੇ ਐਸਾ ਯਾਦਗਾਰ ਸ਼ੋਅ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਭੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਤੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਕਰੇ ਇਵੈਂਟ ਬ੍ਰਾਈਟ ਪਰ ਨਹੀਂ ਤੋ ਆਪ ਮੁਝੇ ਕਾਲ ਕਰੇ 0794925036 ਕੇ ਉੱਪਰ 16 ਅਕਟੋਬਰ ਕੋ ਲੰਡਨ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲਾਓ ਮੈਂ ਔਰ 18 ਅਕਟੋਬਰ ਕੋ ICC ਬਰਮਿੰਗਮ ਮੈਂ ਤੋ ਯੇ ਦੋ ਸ਼ੋਅ ਐਸੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਯਾਦਗਾਰ ਸ਼ੋਅ ਜਹਾਂ ਪਰ ਹਮ ਸਭ ਕੇ ਫੇਵਰੇਟ ਉਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਨਾ ਆਜ ਕੇ ਵੋ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਕਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੋ ਚਲਤੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ
0: तो ऑल इन वन फुल पैकेज माशाल्लाह।
12: तो ये ऐसी चीज होगी कि जिंदगी भर आपको याद रहेगी। तो कुछ ही टिकट्स है, प्लीज बुक करें और आके हमारे साथ ये दो दिन मनाए जाएं। वो कहते हैं ना ईद दिवाली मनाई जाती है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी ये ऐसे दिन है आप लोग ये भूल नहीं पाएंगे। तो आके हमारे साथ 16 और 18 को आके हमारे साथ विरासत टूर को प्रॉपरली सेलिब्रेट करें।
0: विरासत टूर जैसा कि आप जानते ही हैं, समरीन जी जो बोल रही क्रिएटिव टीम की कर्ता धरता है और उसके साथ साथ पीस नेशन यूके, और आपके लिए मैं इतना ही कहूंगी कि अमनो अम्मा की खैर मांगनी चाहिए। वो क्या कहते हैं, शोला बकफ़ है जिंदगी। अमनो अम्मा की खैर हो, मिलकर दुआएं मांगिए, सारे जहां की खैर हो। और सारे जहां की खैर इसी तरह हो सकती है कि अगर ये हम मोहब्बतें जो हैं ये म्यूजिक को आर्टिस्ट को लेकर आए और उनको कहें कि यार लड़ाई झगड़ों के अलावा ये है लाइफ, इसको एंजॉय करो। सो क्रेडिट गोज टू यू डेफिनेटली पीस नेशन यूके और क्रिएटिव टीम। और लखविंदर जी का तो मैं क्या ही कहूँ, मतलब मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, लेकिन जो है ना वो आपका एक लाइन अगर मैं कहूँ, अगर आप गुनगुनाते हैं तो क्या आप गुनगुनाएंगे?
11: अभी वैसे थका बहुत हुआ हूँ एक्चुअली, मैं बैक टू बैक ट्रैवल
0: आस्ता आस्ता करते मस्त नजरों से अल्लाह।
11: चलो आप ऐसे ऐसे आप अगर ऐसे कहेंगे तो मैं गा ही दूंगा
0: थोड़ा सा मुन्ना सा।
11: चलो
0: सो स्वीट, थैंक यू।
11: मस्त नजरों से जिसका बड़ा वास्ता, वो हसीनों के जलवों पे मारा गया, हुस्न वालों

0: मस्त नजरों से जिसका बड़ा वास्ता, वो हसीनों के जलवों पे मारा गया।
1: क्या बात है, क्या बात है। वो कहते हैं ना, आबशारों की बात मत करना, तुम सितारों की बात मत करना, तुमने देखा है उसकी आंखों को, तुम खुमारों की बात मत करना। बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ लखविंदर जी की होगी इंशाल्लाह। और एक दफा फिर से मैं आपको याद दिला दूं, 16th को जो है वो होगा, 16th अक्टूबर की मैं बात कर रही हूँ, सो ओनली 2 days, 16th को होगा क्रिस्टल ग्रैंड स्लाउ में, और 18th को ICC बर्मिंघम में विरासत टूर UK, पीस नेशन और क्रिएटिव टीम की मिली कोशिश, मिली जुली कोशिश एंड इंशाल्लाह वेरी कामयाब कोशिश। और कुछ कहना चाहेंगे तो मुझे बताइए
0: जी। मैं ओ पंजाबी च कह देना
1: जो जरूर को जी, जमजम को
0: साडे ना जी इंडिया च, ओ पंजाब च खैर खास तौर ते इंडिया च भी कह देंदे कि कोई मूवी आंदी ना ते कहंदे पैसे वसूल हन।
1: हां
0: ते हुण इत्थे मैं उत्थे जदों कैनेडा सी ते उहनां दे भी डॉलर जिहड़े आ ओ वसूल कराए।
1: आई एम श्योर अबाउट इट, नो डाउट।
0: हुण वाले आ और मैं गारंटी कह लो इहनू, मेरा तुहाडे नाल प्रोमिस कह लो, जिहड़ा इह शो होगा बहुत डिफरेंट शो होगा ते बाकीआं शोआं नालों यादगार शो होगा। ते ए मेरी दिली इच्छा है कि इदां दा डिलीवर करके जावां कि अगला शो कहन के बाजी 6 महीने बाद कर लो।
1: सही गल है, वो कहन 10 ईयर्स हिजर दी हद, मैनू तू फिर मिलेगा कद, मैनू
0: हाय हाय हाय
1: मुक जाना जुदाई दे झगड़े, कोल मेरे या सद मेनू, असि थानू सद लेना
0: इंशाल्लाह। ना पैगाम आया, ऐसा रोग लगा मेरी जिंदड़ी नू, ना मौत आई ना आराम आया।
1: आए हाय हाय, क्या बात है, क्या
0: कल फिर इदां दी चीजां होणगीआं मैनू तुहाडे नाल कल, मजा मतलब कल मैं तां कह रहा कि जिहड़ा आउण वाला टाइम जिहदे 16 तारीख नू शो है तुहाडे नाल, मैनू स्टेज ते भी मजा आएगा मैनू
1: इंशाल्लाह।
0: तो मैं टीम क्रिएटिव और पीस नेशन बहुत बहुत तहे दिलों थैंक यू इन्हां नूं कहना, ते बहुत बहुत गुड लक भी कहना। ते मैं ते हुणे कह रहा कि शो यादगार हो जाना होएगा, ते तुहानूं सारयां नूं बहुत बहुत मेरे वल्लों मुबारकबाद एडवांस।
1: बिल्कुल, और वही बात है कि नाम ही काफी है, नाम ही काफी है, एक तो क्रिएटिव टीम और पीस नेशन UK का, और उसके बाद लखविंदर जी का।
2: आई जस्ट वांट टू से लास्ट थिंग इज दिस के शोज दोनों करीबन 80-90% सोल्ड आउट हो चुके हुए हैं, लास्ट फ्यू टिकट्स रह गई हैं, प्लीज विजिट इवेंट ब्राइट, नहीं तो कॉल मी ऑन 0794925036, बुक योर टिकट्स एंड लेट्स सेलिब्रेट, दिस इज नॉट ओनली ए शो, दिस इज ए मेमोरी व्हिच विल कीप, वी विल कीप इन आवर हार्ट्स फॉरएवर।
1: यस इंशाल्लाह, विच यू ऑल द वेरी बेस्ट, और सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट ऑनेस्टली। आई विल बी होस्टिंग बाय द वे, और मेरे साथ होंगे रॉकी खान, और हम दोनों मिलकर जो है थोड़ा बहुत जितना भी हम कर सकेंगे अपना हिस्सा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी कोशिश की जरूरत है। हमारे पास है वन एंड ओनली लखविंदर वडाली जी, ऑल द वेरी बेस्ट एंड लवली लवली लवली टू मीट यू।
0: थैंक
1: यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू
0: लाइका।
3: हम थे वो थे हम थे

और मेरे सीधे साधे मासूम प्यारे प्यारे लिसनर्स, मेरा साथ निभाते रहिए और मेरा वादा है आपसे कि एक से बढ़कर एक गीत आपके कानों तक पहुंचाती रहूंगी पूरे 10 बजे तक। याद रहे, फाइनल आवर में ट्रिब्यूट करेंगे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को। Like a radio, now in more places than ever before. Birmingham.

0: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत हैप्पी हो रहे होंगे ये सारी गीत सुन सुनकर, और मैं हैप्पी हो रही हूँ आपके मैसेजेस देख देख कर. एजाज जी पूछ रहे हैं, अनीसा जी आपका बर्थडे कब था? लो जी अब तो बात पुरानी हो गई, आप छोड़ के देखें, कल था वैसे. बेहद शुक्रिया बिलेटेड विशेज का. और बट साहब ये आप हाय वाले कब से हो गए हैं? एनीवेज हाय, आपके हाय के जवाब में अब ऐसे ही हाय आएगा. हंसा बोरा जी बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, गीत आपको अच्छे लग रहे हैं. अरुणा जी को भी, अरुणा जी कहती हैं दोनों ही गाने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बहुत अच्छे थे, दोनों आपके नाम करते हैं. रानी जी स्लाव में सुन रही हैं और कह रही हैं थैंक यू वेरी मच फॉर प्लेइंग ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. मेरे ब्यूटीफुल लिसनर्स, ब्यूटीफुल चॉइस वाले लिसनर्स के लिए ऐसे गीत होने चाहिए ना.
0: ये है लाइका रेडियो. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: तो लीजिए हम आपको बताते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं दुबई विदाउट अ हैवी प्राइस टैग, तो साउथ होल ट्रेवल इज द आंसर. अफोर्डेबल दुबई ऑफर्स कंबाइंस एक्सक्लूसिव डील्स एट सिलेक्टेड पार्टनर होटल्स विद डायरेक्ट फ्लाइट्स विद एमिरेट्स. तो फ्रॉम जस्ट 629 पर पर्सन फॉर थ्री नाइट्स, ट्रेवल बाय 10th दिसंबर. कॉल साउथ होल ट्रेवल आज अभी इसी वक्त ऑन 0208 843 4444, या विजिट कीजिए southholtravel.co.uk.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Anisa Nasir on Laika Radio, Greater Manchester.
3: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.

0: एंड आई हैव टू कन्फेस कि मेरा ये बहुत बहुत बहुत ही फेवरेट गीत है और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे किसी साथी ने आज ये नहीं सुनवाया, लिहाजा मुझे सुनवाने का मौका मिल गया। क्योंकि किशोर दा के गाए हुए इतने गीत हैं, अगर जो सुबह से चल रहे हैं हम उन्हीं को रिपीट करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा, ढके छुपे रह जाएंगे, प्ले नहीं हो पाएंगे वो गीत जो हम आपको सुनवाना चाहते हैं। उनका हर रंग, हर अदा, हर अंदाज, जीवन से भरी तेरी आंखें, ये चांद, ये सूरज, ये सितारा तेरी आंखें, ये चांद, ये सूरज, ये सितारा तेरी आंखें, सागर की ये मौजें, ये किनारा तेरी आंखें, पूछा गया ख्वाबों का खुलासा भी है कोई, बेसाख्ता हर शख्स पुकारा तेरी आंखें।
1: अनीसा नासिर लाइव अक्रॉस ग्रेटर मैनचेस्टर विद द बिग शो।
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co. UK.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागासन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: दिस टाइम ऑफ ईयर मॉम्स already planning the mithai. Your auntie's counting down the days. Good thing Western Union is fast and easy, because this family does not wait. Send in money directly to their bank account, mobile wallet or for cash pickup. So Diwali is exactly as it should be. Western Union. Share the light like you are there. Visit participating post offices, Euro Exchange or other retail locations. Sending online? Enjoy a zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third party charges may apply.
5: Sunshine, skyscrapers and souks
6: for less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
5: Flying direct with Emirates, so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
6: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
5: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
6: Southall Travel. At all protected.
7: Carotino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Carotino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Carotino Better Ghee.
8: Bollywood's biggest 90s songs non-stop.

मंदा पटेल जी और खालिद चौधरी साहब, ये गीत गया आप दोनों के नाम, क्योंकि आप दोनों का ही बहुत फेवरेट है। और अगला गीत दिनी जी आपके नाम कर दूं। ना मुझको शहर मिला है ना बन दिखाई दिया, ना मुझको शहर मिला है ना बन दिखाई दिया, किसी को क्या ये मेरा अंधापन दिखाई दिया। मलाले तर के ताल्लुक तुम्हारी आंखों में, मलाले तर के ताल्लुक तुम्हारी आंखों में, बिछड़ते वक्त मुझे दफतन दिखाई दिया। प्रज्ञा जी बेहद शुक्रिया।

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: One British pound aaj aapke dil aa sakta 367 Pakistani rupees, 126 Indian rupees, 86 Afghan afghani, 163.3 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
1: The gold is currently trading at £100.97 per gram.
0: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
1: और दोस्तों पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहां जहां शहंशाह कव्वाली उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के फैंस मौजूद हैं मौसीकी के चाहने वाले हैं वो आज इस दिन को बड़े ही प्यार से मना रहे हैं अपनी मुनफरिद बहुत ही यूनिक आवाज और सूफियाना कलाम के जरिए दुनिया भर में पहचान बनाने वाले जनाब उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब आज भी मौसीकी के शाकीन के दिलों में जिंदा है 13 अक्टूबर 1948 में फैसलाबाद में पैदा हुए जो उस वक्त लॉयलपुर कहलाता था ऐसे घराने से उनका ताल्लुक था जिसमें कव्वाली की रिवायत कई नस्लों से चली आ रही थी उनके वालिद उस्ताद फतेह अली खान साहब भी नामवर कव्वाल थे उनकी अचानक जो है वफात के बाद नुसरत फतेह अली खान साहब ने बहुत ही छोटी उम्र में खानदानी कव्वाली पार्टी की जिम्मेदारियां संभाल ली और अपनी गायकी से कव्वाली को उन्होंने जो पहचान दी है बस वो चलती चली आ रही है और चलती चली जाएगी उनके भाई फर्रुख फतेह अली खान जो कि राहत फतेह अली खान के डैडी हैं उन्होंने भी इनके साथ हारमोनियम और दीगर साजों पर फन का मुजाहरा किया जबकि राहत फतेह अली खान साहब ने भी उनकी शागिर्दी में ही गायकी के सफर का आगाज किया वो अक्सर अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि मैं स्कूल जाने से कतराता था घर वाले कहते थे स्कूल जाओ तो खान साहब हमेशा मुझे अपनी पुर शफकत आगोश में ले लेते थे और कहते थे छोड़ो मत भेजो उसको So, बहुत टाइम उन्होंने गुजारा और बिल्कुल उन्होंने राहत फतेह अली खान साहब को अपना बेटा ही मानकर सारी जिंदगी जब तक वो जिंदा रहे उनका साथ दिया उनको सपोर्ट किया उनको सिखाया उनको यहां तक पहुंचाया और बस उसके बाद से उनकी लेगेसी को लेकर आगे चलने वाले राहत फतेह अली खान साहब ने भी उन्हें मायूस नहीं किया नुसरत फतेह अली खान साहब की बुलंद और गूंजदार आवाज तवील तानों और सुरों पर गैर मामूली गिरफ्त ने कव्वाली को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने में अहम किरदार अदा किया उनके फन ने बड़े सगीर की मौसीकी को दुनिया के मुख्तलिफ खितों तक पहुंचाया हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात के एतराफ में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी यानी कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उससे भी नवाजा जब तक मौसीकी रहेगी किशोरदा हों रफी जी हों मुकेश जी हों या जनाब उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब उनके लिए मोहब्बत इसी तरह दिलों में पलती रहेगी थैंक्स टू दीज प्लेटफॉर्म्स जैसे कि आपका रेट्रो लाइक अ गोल्ड इसी के दमखम से हम हैं और आपका सपोर्ट आपके साथ इसे आगे बढ़ाने में आगे चलाने में हमें बहुत मदद देती है सो थैंक यू वेरी मच लीजिए आप बाकी के दो बहुत ही प्यारे प्यारे कलाम का लुत्फ उठाएं अनीसा को आज के लिए इजाजत दें कल मैं गैर हाजिर रहूंगी बहुत माजरत लेकिन मेरा जो भी प्यारा साथी आएगा वो आपको अच्छी तरह से एंटरटेन करेगा आई एम श्योर अबाउट दैट अपना ख्याल रखिएगा मेरे जाने के बाद गोल्ड नाइट के चुने हुए म्यूजिक का लुत्फ उठाइएगा और सुबह यहाँ ग्रेट लंदन में काजल होंगी हमारी ब्रेकफास्ट प्रेजेंटर और उसके बाद दिन भर ये सिलसिला चलता रहेगा तमाम प्लेटफॉर्म्स पर शब खैर शुभ रात्रि गुड नाइट रब सोने दे हवाले
0: इज LIKA रेडियो योर नंबर वन चॉइस इन ग्रेटर मैनचेस्टर This is LIKA Radio, part of the LIKA Radio Network.

0: This is Anissa Nasir with The Big Show. Yes, we're in the final. I know. I still can't believe it. We're actually going. Flights booked, tickets sorted. But hang on, how are we going to use our phones over there? We'll need them for tickets, maps, photos, and obviously sending the celebrations home.
1: Simsy, data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available. And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs.
0: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in 3 minutes.
1: Come on, let's go win this.
2: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simsy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simsy.com. Terms apply.
3: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
4: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
3: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
4: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
3: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: Sunshine, skyscrapers and souks
6: for less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
5: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
6: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
5: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
6: Southall Travel. At all protected.
7: बात क्या है बंटू? अरे बोलो काक भसुंडी।
8: मेरठ की क्योटिक फैमिली में आई पिक्चर परफेक्ट दुल्हन।
7: अरे क्या हुआ? क्या हो गया?
8: और लाइफ बन गई हेवन।
7: भाभी डायन है।
8: But wait, ये भाभी है या डायन इन डिस्गाइज?
9: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना? लो आ गई।
6: नई नवेली स्टारिंग यामी गौतम धार, प्रोड्यूस्ड बाय आनंद एल राय। नई नवेली इन सिनेमाज अक्टूबर 16।
9: आप सिर्फ मजे लो।
10: इंग्लैंड में हम पानी को उससे ज्यादा तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं जितनी तेजी से कुदरत उसे पूरा कर सकती है। अगर कुछ तब्दीली ना हुई तो 2055 तक हम रोजाना 5 बिलियन लीटर से ज्यादा पानी की कमी का सामना कर सकते हैं। और वेल्स में ज्यादा बरसात वाली सर्दियां और ज्यादा खुश्क गर्मियां पानी के जखीरे पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अक्सर लोग समझते हैं कि हम रोजाना तकरीबन 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत इससे काफी ज्यादा लगभग 140 लीटर के करीब है। हम सब कुछ आसान तब्दीलियां करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। छोटी शावर लें, लीक होने वाले नल या टॉयलेट को ठीक करवाएं। बर्तन धोने के लिए नल खुला रखने की बजाय एक बाउल का इस्तेमाल करें। डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एक्टिव मोड का इस्तेमाल।
0: The biggest romantic songs are up next on Love Sound.
11: Like
12: Hey, this is Riz Khan and I'm taking you home on Drive. Weekdays 4 till 7 p.m. at Leica Radio Greater Manchester.